नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने दी 19 तारीख, तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जुलाई महीने दी आज 10 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सैकेंड होए ने। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा वेद कतेब कुरान पुराना न सहज एक नहीं देखा। गुरु रविदास जी कहते ने कि कृष्ण करीम राम हरि और राघव इस सारे ही नाम उस परमेश्वर उस ईश्वर देने जद तक इंसान इन सारे ही नामां दे अंदर छुपे हुए उस परमात्मा नू नहीं पहचान लेंदा इंसान उदो तक गवाचिया रहिंदा है और ईश्वर दे असली अस्तित्व नू समझ नहीं पाउंदा।

बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोए। संत दयाबाई जी कहते ने कि इस दुनिया दे सारे अडंबरा तो रहित आंतरिक ते मानसिक जिहड़ा सुमिरन है परमात्मा दा, सानू ओ करना चाहिदा है। क्योंकि सच्चे ईश्वर दा जो स्मरण है, बिना जीभ हिलाए बिना हाथ दे विच माला फेरे, सिर्फ अंतर आत्मा दी गहराई दे नाल निरंतर चलदा रहिंदा है, ते इही असली नाम सिमरन है। ते नाम सिमरन करदे होए इंसान नू परमात्मा दा कीता सब कुछ चंगा लगदा है, ते उस दे सिर ते उस ईश्वर दी कृपा हमेशा बनी रहिंदी है।

साध साध सबको कहे दुर्लभ साधु सेव, जब संगति होए साध की तब पावे सब भेव। असली साधु मिलना, असली संत मिलना, जिसने अपना मन साध लिया होवे, वो आज दी दुनिया च बहुत औखा है। हर कोई साधु बनिया फिरदा है चोला पाके, लेकिन असली साधु ओही है जिसने अपने इंद्रियां नू अपने मन दे अंदर चल रही मोह माया नू कामनावां नू साध लिया होवे। ते जदों एदां दे साधु दी शरण मिलदी है ता इस भवसागर चो बाहर निकलण दा रस्ता भी ओ गुरु बन के आप दसदा है।

जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। खुश रहने का आसान सा रास्ता ये है कि कभी किसी को जीतने की कोशिश नहीं, बस उनके साथ हंसने की कोशिश करो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी हैप्पी पॉजिटिव एंड रिफ्रेशिंग जे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग तहानू सबनो। 7:05 और पूरे 9 सेकंड हो गए ने और ट्यून की तहाया जी तुसी तो हांडा ते मेरा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन एफएम रेनबो 102.7 ते 103.6 ते यानी कि एआईआर अमृतसर ते और इसी फ्रीक्वेंसी दे जरिए सरहद पार तो भी साडे प्यारे प्यारे लिसनर्स सानू ट्यून कर देने यानी कि आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल नु। हांजी हांजी, तुहाडे वल वी आ रही हां और जिन्हां ने सानू मैनुअली मतलब खुद सर्च करके खुद दी मर्जी दे नाल ट्यून कीता होया है सानू देशां विदेशां दे कोने कोने दे विच साडी ऐप दे जरिए यानी कि न्यूज ऑन एआईआर दे जरिए। दिल तो थैंक यू जी तुहाडा, तुहानू भी खास गुड वाली मॉर्निंग है। सो एनर्जी दी पावर हाउस इस वेले माइक दे इस पासे बैठी हुई है तुहाडी दोस्त

आरजे पूजा टोहानी और आज केड़ा दिन है? हाँ जी नहीं नहीं 10 जुलाई ते है, शुक्रवार है ना। और मैं की कहनी हूँ मिया, शुक्र है कि शुक्रवार है। सो एक बार फिर तो शुक्रवार दी सवेर, फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि वीकेंड की शुरुआत होने वाली है। बस अज का दिन है, कल फिर आप घूमी कर निकल जाना है ना? कोई नहीं, निकलेंगे घूमन भी, जावेंगे प्लानिंग भी करेंगे, लेकिन फिलहाल का जो सफर है तो शुरू कर लिए। हाँ जी होने वाला सफर आज हमने शुरू करना है आप। हाँ जी मैं पता है केड़ा। ओके पता है तो उन्होंने बहुत चंगी गल है, लेकिन जिन्होंने अज पहली बारी ट्यून किया उन्होंने भी तो दस दईए सफर का नाम की है। भाई सफर शुरू कर जा रही हाँ, इनफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट की फलान डोज भरया होया। गुड मॉर्निंग जलंधर का। हाँ जी बेशक जलंधर तो मैं प्रोग्राम करना है, लेकिन सुनना तो दूर दूर देशों विदेश

शौक और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ।
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਵਸਰ ਦਿਆ, ਇਸਕੇ ਲਈ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
0: ਜੀ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਿਕਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਿਕਸ, ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਿਕਸ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भारतीय नैतिकता को अगर आप समझें, और वो भी कंपैरिजन करके जैसे पश्चिमी नीति शास्त्र से आप बात कर रहे हैं
0: जी,
1: तो वहां पर सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वहां गॉड का प्रिंसिपल है
0: जी।
1: लेकिन हमारे यहाँ पर गॉड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना धर्म इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, आप जो करने के लिए जो आप बने हैं, तो वो मुझे लगता है कि हमें पश्चिमी दुनिया से एकदम से भिन्न कर देता है
0: जी।
1: लेकिन वो ही प्रिंसिपल हमें उनसे जोड़ता भी है
0: जी।
1: लेकिन भिन्न और कैसे करता है
0: जी?
1: क्योंकि गॉड जहां पर होगा वहां पे रिलीजन डोमिनेट करेगा
0: जी,
1: और जहां पर आपका धर्म होगा वहां आपका मॉरल कॉन्शियस डोमिनेट करेगा, इंटरनल वॉइस जिसको बोलते हैं
0: जी, जी।
1: कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि भारतीय और पश्चिमी नीति दर्शन को अगर आप देखेंगे तो वो अलग है। और भी अगर मैं आपको कहूँ कि रिलीजन का अर्थ होता है वन बुक वन प्रॉफिट एंड वन गॉड
0: जी, जी।
1: अब आप इन तीनों को अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संदर्भ में लगाकर देखें, आपको ये तीनों ही एब्सेंट मिलेंगे
0: जी।
1: तीनों ही हमारे यहाँ पर ना वन गॉड है, गॉड भी कितने हैं, 33 करोड़
0: जी,
1: है ना
0: जी जी जी।
1: वन बुक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वेद भी चार हैं, उसके बाद रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, और आगे चल के गुरु ग्रंथ साहब भी आ गए, सब आ रहे हैं
0: जी,
1: है सब
0: जी।
1: उसमें मौजूद है, शामिल है। और फिर वन प्रॉफिट भी नहीं है
0: जी।
1: हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है कि जो एक ही है, हमारे तो अवतारों की लड़ी लगी हुई है और कल की इज इन द वेटिंग, है ना। तो उस दृष्टि से धर्म जो है उसकी अप्रोच, उसकी जड़ें जो बहुत नीचे तक जाती हैं और हमें बड़ा ग्राउंड के साथ जोड़ के रखने का काम जो धर्म करता है
0: जी,
1: शायद रिलीजन उस तरह से नहीं करता होगा, इसीलिए धर्म का यहाँ पे ज्यादा बोलबाला है
0: जी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਵਤਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਧਰਮ, ਕਰਮ ਔਰ ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
1: ਦੇਖੀਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। आप उससे मतलब जानते बूझते, देखो पूरी भगवत गीता जो है इसी बात के ऊपर आधारित है
0: जी।
1: कि वो अर्जुन को कृष्ण यही समझा रहे हैं कि तुमने अगर मौके पे जो आपको आपका करने वाला काम है वो नहीं किया
0: जी,
1: तो आने वाले जो समय है, जेनरेशन है, वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे
0: जी, बिल्कुल।
1: तो
0: जी।
1: जो आपका धर्म है वही आपका कर्म है, वही आपका सत्य है। सत्य को आप ऐसे समझ सकते हैं जो वाणी में है, जो आप वाणी में उतारते हैं, मतलब इसी में हम इतना बोल कहते हैं ना कि सत्य सत्यम वद धर्मम चर्म, है ना, कि सत्य बोलो। क्यों? क्योंकि वाणी से कहा हुआ शब्द में प्रभाव होगा
0: जी।
1: आप देखिए, आशीर्वाद भी जो दिया जाता है हमारे पंजाब में, तो बहुत इसका बहुत अच्छा, बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे
0: जी।
1: कि हम जो आशीर्वाद भी देते हैं वो बोल कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: जी जी,
1: जिंदे रहो, खुश रहो, बसते रहो, है ना, इस तरह के हम प्रयोग करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम

0: वो मान रहे हैं, हम सत्य मान रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, और जो बच्चा आपसे आशीर्वाद ले रहा है वो भी ये मान के ले रहा है कि ये मेरे को झूठ में आशीर्वाद नहीं दे रहा, ये सच्ची बोल रहा है
1: जी।
0: इसके मुंह से जो निकलेगा वो सच्ची निकलेगा
1: जी, जी
0: है ना
1: जी।
0: तो सच कर्म, सत्य कर्म और धर्म ये बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ इनके भेद हमें मिलते हैं कि कोई वाणी का प्रयोग जहाँ पर हो रहा है वहाँ सत्य आएगा, जहाँ पे कर्म आप मनसा वचसा कर्मणा जिसे बोलते हैं, कर्म से जो आप काम कर रहे हैं तो वो कर्म है आपका, और वही आप जब अपने आचरण में उतारते हैं तो वो आपका धर्म बन जाता है
1: जी। और होम गल कर दीजिए तो

0: ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो एआई जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी भी आ गई है। लेकिन ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमारे नौजवानों को भी और हर हर उम्र के लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मनुष्य और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा अंतर जो है वो है भावना का।
0: जी,
1: मेरे में जो फीलिंग कैपेसिटी है ना, जो मैं आपसे बात करती हूँ फील कर सकती हूँ, वो आपके श्रोता जो आपसे बात करते हो या आप उनसे बात करते हो, जो फील करके काम करते हो, वो एआई नहीं कर सकता भाई, मानना पड़ेगा इस चीज को हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एआई में प्रोग्रामिंग पूरी है लेकिन भावना पक्ष बिल्कुल खत्म है, उसमें है ही नहीं, खत्म क्या, कभी पैदा ही नहीं हुआ,
0: पैदा ही नहीं हुआ, जी है ही नहीं।
1: तो उस तरह से मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को भी और हर हर जनरेशन को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे मूल्य, हमारा, हमारी संस्कृति, हमारे जितने भी कल्चरल वैल्यूज हैं, वो हमें भावना पक्ष हमारा प्रबल करने के लिए बने हैं।
0: जी
1: ठीक है ना, वो हमारे भावना पक्ष, टेक्नोलॉजी तो चलती रहेगी और आज आई है कुछ, कल को कुछ और आ जाएगी, लेकिन जो भावना पक्ष प्रबल हमारा, हमारे मूल्य करते हैं, जो घर में बच्चा जब सुबह उठता है तो वो जाके अपनी माँ के पैर छूता है, बाप के पैर छूता है, वो टेक्नोलॉजी भी करेगी लेकिन बच्चा जिस भावना से कर रहा है उसका मुकाबला नहीं है भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका कोई मुकाबला नहीं।
0: जी, बहुत सही और बिल्कुल सही किया तुसी। और अज दे टाइम दे विच जिथे बहुत ज्यादा हिंसा, बहुत ज्यादा गुस्सा, अग्रेशन वध गया हर किसी दे विच बिना किसी कारण, और असी कई बारी चीजां नूं जिन्ना क इमोशंस दे नाल सानूं समझना चाहिए असी उस समझ ही नहीं पाउंदे, असी बड़ी इंसान ही मैं महसूस करदे कि कितने कितने बहुत मकैनिकल बन गया कि जिदा लकीर दे फकीर असी कह दिंदे कि जिदा कह दिता गया ओदा ही होना चाहिए। सो ओदे बहुत प्रोज एंड कॉन्स होंदे ने, असी इंसान हाँ ते यही सानूं मशीन तो वखरा बनाउंदा, यही सानूं टेक्नोलॉजी तो वखरा बनाउंदा। लेकिन हुण असीं गल करदे अहिंसा दी, सहनशीलता दी, दया दी ते सेवा वर्गे इह जिहड़े मुल ने, इह अज दे अज दे टाइम च समाज दे विच बहुत ज्यादा जरूरत है इहनां दी, असीं सब समझदे हां। लेकिन इस दे नाल नाल भ्रष्टाचार, वातावरण दी संभाल, कारोबारी नैतिकता, साडे जिहड़े जनतक जीवन है, इदां इह सारीयां चीजां दे विच बहुत सारी चुनौतियां भी ने, है ना, साडे अगे। सो इहनां दे चुनौतियां दे हल दे ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
1: ਦੇਖਿਏ, ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਨਕੋ ਆਪਣੇ ਸੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੀ। ਜੈਸਾ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਕਹਾ ਕਿ ਅਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਮ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਸ਼, ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, मेरी हवा, मेरे जल स्रोत, मेरी नदियां, मेरे पहाड़ पर्वत, सब जो है वो मैं ही हूँ, मेरा नहीं है, वो मैं ही हूँ। तो जैसे मैं अपने को रखूंगी, क्या मैं अपनी जो जो मेरे अंग हैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी? जैसे मैं अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ, तो क्या मैं वही, अगर मैं भावनात्मक पक्ष पेड़ों पे लगाऊंगी तो क्या मैं कभी पेड़ को काट पाऊंगी किसी तरह से?
0: जी जी जी,
1: है ना। तो वही वही काम आपका, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि प्रोफेशनल रिलेशंस में कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशंस में जेलसी जहां पर आ जाती है, वहां पर यदि एक व्यक्ति भी ये सोचकर चले कि अभी इसकी आंखें नहीं खुली दूसरे की, लेकिन मेरी खुली हुई है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे ये मैं ही हूँ,
0: जी,
1: है ना, तो वो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। और जो लोग जगे हुए हैं, मैं तो यही कहूंगी उन पे कोई विशेष कृपा है, और उनका ये धर्म है कि वो दूसरों के प्रति कभी भी वैर भाव ना रखें, बल्कि जगाने का प्रयास करें। ये आपका कार्यक्रम भी जगाने का ही प्रयास है मेरी दृष्टि में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है ना जी। तो ये आप आकाशवाणी कहिए, ये पूजा कहिए, कुछ भी कहिए, ये एक ही है
0: जी।
1: और इन लोगों ने जो ये इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जगाने का काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत लोक कल्याण का काम।
0: जी
1: है।

0: जी बिल्कुल। और आखिर दी एक होर चीज़ थोड़े तो मैम जानना चाहूँगी, तुम बहुत ही संवेदनशीलता दे नाल हर सवाल का जवाब दिता, महसूस होया मैनू भी और साडे लिसनर्स नू भी डेफिनेटली होया होएगा। भारतीय नैतिकता नू अपना के असी एक जिम्मेवार संवेदनशील ते आदर्श नागरिक बनने दे लई मतलब काफी कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन तुसी श्रोतिया नू खास करके जिहड़े साडे यंग लिसनर ने साडे नौजवान ने जिन्हां ने अगे जाके देश नू संभालना है उन्हां नू तुसी अपने वल्लों की संदेश देना चाहोगे?
1: एक तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी नजर, अपनी दृष्टि, अपनी अपना अपनी सोच इसको जिंदा रखिए
0: जी,
1: और साथ साथ में जो आपको परंपरा, एक इस भारतीय परंपरा जो आपको प्राप्त हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं जिंदा रखने का प्रयास करें, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, ये उसी परंपरा का बहाव हम संभाल के बैठे
0: जी,
1: हमें भी तो किसी ने पकड़ा है ना ये मूल्य, हमारे घर वालों ने, हमारे टीचर्स ने, कहीं ना कहीं से तो हम जिन लोगों से मिले उन लोगों के अच्छे प्रभाव जो हम पर पड़े वो किसी बहाव के थ्रू हमें मिले हैं, तो उन प्रभावों का कहीं ना कहीं कोई मूल्य है, वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है
0: जी।
1: तो उन प्रभावों से मुझे लगता है जो यंगस्टर्स, क्योंकि कहते हैं आप देखिए कि गुरुकुल जो होते थे उसमें शिष्य जो था वो टीचर के साथ रहता था, गुरु के साथ रहता था, वो इसलिए नहीं रहता था कि भाई वहाँ राधा के घर से कोई गुरुकुल चलता हुआ देखा है, सुना है कभी?
0: नहीं सुना होगा।
1: जो गुरुकुल चलता था वो जंगल से चलता था, उसका मतलब था गुरु और शिष्य दोनों इकट्ठे काम करेंगे
0: जी,
1: एक साथ जाएंगे, वो लकड़ी भी काटेंगे, खाना भी बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज का यूथ जो है उसको पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, वो पार्टिसिपेटरी जब तक नहीं होगा, समाज के जो कर्तव्य हैं, समाज का जो भार है उसको वहन नहीं करेगा। अगर वो एस्केपिज्म में रहेगा, और टेक्नोलॉजी बहुत सा एस्केपिज्म क्रिएट करती है, ये जितना रियल वर्ल्ड चल रहा है हमारा
0: जी,
1: जो पकड़ा दिया गया है हमें, है ना
0: जी बिल्कुल,
1: ये सब हमें हमारे लिए एस्केप क्रिएट कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: एस्केप से बचने की आवश्यकता है, और घर से जुड़ने की जरूरत है, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने समाज के प्रति। आप देखिए, आप जैसे ये मान लेंगे ना कि मैं और आप अलग नहीं है, आप इतने सहज हो जाएंगे, इतने स्वाभाविक हो जाएंगे हर व्यक्ति के साथ
0: जी,
1: कि आपको कहीं ओपरापन नहीं लगेगा।
0: बिल्कुल ये गल तुसीं बहुत सही कही मैम कि ये जिहड़ी टेक्नोलॉजी कितने ना कितने एस्केप है साडी क्रिएटिविटी दे लई भी, साडी इमोशंस दे लई भी, और जदों बंदा इहदे च फस जांदा ना ओ असल दे विच जदों असीं हुण नोटिस करिए या इस चीज़ ते रिफलैक्ट करिए इमोशनलैस हो रहा है इंसान जो ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी ते डिपेंडेंट है, और सहज होण दे लई जरूरी है दूसरे इंसान दी ह्यूमन वैल्यूज़ नूं उस नैतिकता दे नाल नाल एक मनुखी भावनावां नूं भी समझण दी, उन्हां गहराई नूं समझण दी, तां ही असीं एक दूसरे दा साथ भी दे सकदे आ मशीन तों हट के।
1: बिल्कुल ठीक,
0: थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मैम, तुसी अपने कीमती समय चो समा कड़े और साड़े नाल
1: आके मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: थैंक यू सो मच मैम, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।
1: थैंक यू
0: मैम,
1: नमस्ते नमस्ते।
0: ਸਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਥਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡੀਪਲੀ ਕਨੈਕਟ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਓਨਲੀ ਔਨ FM ਰੇਨਬੋ, ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੈਕ।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स. और देखो 8:40 हो गए ने और तुहाडे एंटरटेनमेंट दे लई म्यूजिक ते ढेर सारा बीट म्यूजिक लेके हाजिर हाँ, क्योंकि टाइम हो गया है 8:40 यानी कि तुहाडे फेवरेट सैगमेंट अड्डी टप्पा दा, जिस विच बैक टू बैक इंजॉय करोगे तुसी पंजाबी बीट सॉन्ग्स मेरी इंटरप्शन तो बिना. ते मेरी कोशिश यही होएगी कि तुहानू चंगी तरह नचा के टपा के तुहाडी अड्डी नू दुखा दिता जावे. सो शुरू करते हैं अज्ज दा ए अड्डी टप्पा दा सफर इस पहले गीत दे नाल.

जुलाई 2026 है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

दर्शन उस इंसान दे करने चाहिए ने, उस शह दे करने चाहिए ने, उस गुरु दे करने चाहिए ने, जिन्हां दे दर्शन करके दिन वधिया लंघे, है ना। वैसे कहंदे ते ये कि मन दे विच परमात्मा दे दर्शन कर लो, दिन अपने आप वधिया जांदा है। वैसे हर दिन बहुत सारियां गलतियां हुंदियां ने, बड़ियां चीज़ां असीं सीखदे हां, क्योंकि हर दिन इक्को जिहा ते हुंदा नहीं है। ते बस यही गलतियां सानू बड़ा कुछ सिखाउंदियां ने, क्योंकि असीं अपनियां गलतियां तो ही सीख सकदे हां। वैसे भी इंसान सीखने नू दूसरियां दीयां गलतियां तो भी सीख सकता है, लेकिन मैनू लगता है कि जदों आपां कोई गलती कर लईए एक बारी, उदों सानू फिर पता हुंदा कि हाँ जी आ गलती हो गई है ना, ये अगली बारी होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब दे नाल ते ये है कि अगर सैल्फ इंप्रूवमेंट आपां चाहुंदे आ, काम करदे आ, गलती हुंदी है, यही सब तो बेस्ट वे है सीखण दा। गलती करो, सीखो और अगे तो गलती बिल्कुल ना करो। वेलकम बैक इस बहुत ही वधिया जे दमदार ते नचदे टपदे गीत तो बाद। पूजा टोहानी यानी कि मैं तुहाड़े नाल, और मेरे कोल पहला मैसेज आया है जी बड़ी दूरों, बड़ियां सोहणियां सोहणियां ठंडियां ठंडियां हवावां तो, हाँ वादियां तो, पहाड़ां दियां तो, शिमले तो मैसेज आया जी। किन्नी प्यारी दी जगह ना शिमला। चलो गल्लां चों बाद चों घूमदे आं, पहलां असीं मैसेज पढ़ लैंदे आं। गुड मॉर्निंग टू आरजे ऑफ एफएम रेनबो जलंधर, सूरज

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान

0: आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है एक छोटी जी ब्रेक के बाद और जल्दी नाल सुन रहे प्रोग्राम जो अगला वॉइस मैसेज के ना आया है।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी।
2: मेरा अपना पंजाबी प्रोग्राम सुनने वाले सारे श्रोता नु मेरे वलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम जी।
1: स्वागत है जी प्रोग्राम च।
2: जय माता दी। मैं यशपाल शर्मा जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जम्मू तहसील खड़ावली पिंड साडा सिउणी
1: जी
2: तो मैसेज तुहानू भेज रहे हैं। एक माता दी छोटी जी पेट ओदियां के दो चार लाइनां तुहानू सुना दिंदे हां
1: जी जी
2: डोगरी च।

0: आटा बनावा फूल के, मैं गुना आटा बनावा फूल के, पता नहीं मेरी माँ केड़े मुल के, ना रोल माये मेरू ले गईया, तेरा दरबार भूल गईया। मेलावा चाबी मैं खोला जिंदरे, मेलावा चाबी मैं खोला जिंदरे, पता नहीं मेरी माँ तू केड़े मंदरे, ना रोल माये मेरू ले गईया,
1: वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सोहनी तुसी माता दी पेट सानू सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत चंगा लगा सुन के और बहुत वधिया तुसी गा के सुनाई है जी। चलो इस नाल ही चलते हैं प्रोग्राम च अगले वॉइस मैसेज दे वल।
2: ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਬ ਥਲੇ ਕਦੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: करनी है।
1: हाँ, इसका मैं थोड़ा क्लियर करता ना, वेदा भी कोई गल नहीं हैगी, मेहनत करो
0: अच्छा सुनिया देता है।
1: लगेगा।
0: ते सर फिर हुण
1: हाँ
0: आपां
1: जी
0: अगे अपने गीत वाल वधीए,
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी।
0: ते फरमाइश दसो फिर, दिलजीत
1: दिलजीत
0: दोसांझ
1: दोसांझ
0: या अमर नूरी।
1: तो मैडम बहुत वधिया कर दो, मेरा तो ना सवेर का सोच सोच के एक गाना सुनूंगा वो सुनूंगा,
0: हाँ
1: पागल हो गया दिमाग, तुसी दस्या मैं सारे छड़ दो दिमाग ही
0: टेंशन ही खत्म
1: लाता।
0: करती है। वधिया गल है ना,
1: जी
0: कदी कदी ते मतलब
1: बहुत
0: साडा
1: बहुत
0: फर्ज,
1: वधिया बहुत
0: मेरा फर्ज भी
1: वधिया।
0: बनता है ना कि तुहानू थोड़ा जिहा रिलैक्स हो जाए।
1: नहीं, मैं दिमाग तो काफी लागे परे रखती, मैं कहा हूँ ठीक है जी मैडम आ गए हूँ, कोई चिंता नहीं।
0: चलो वधिया गल, एक घंटा
1: दिलजीत
0: स्ट्रेस
1: दोसांझ दा
0: फ्री।
1: दस्सो जी,
0: शुक्रिया, बहुत वधिया लगा सर कॉल
1: मैडम
0: कीती
1: शुक्रिया
0: दसी,
1: बहुत
0: थैंक
1: बहुत
0: यू
1: मैडम।
0: सो मच। और इदा ही सानू और साडी प्रोग्राम नू प्यार दिंदे रहो, एफ एम रेनबो नू प्यार करदे रहो। ते लो जी दिलजीत दोसांझ दी आवाज़ दे विच गीत इंजॉय करदे हां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कर रहे हो, मतलब गर्मी ने हाड़े कड़े हुए ने।
1: रात का कोई मौसम ठीक हो है जी, तो गर्मी तो बहुत पै रही है इधर जलंधर च, मीह नहीं पै रहा, बस सारे पासे मीह पैण डिया। अज हरियाणा च 4 दिन हो गए कहते मीह पै रहे जी।
0: पर वो है ना कि
1: हाँ
0: पंजाब दे भी बड़े सारे हिस्सों दे विच बारिश होंदी है, कदी किते होगी कदी किते होगी।
1: जी हाँ जी
0: जिदां कि ना सर्दियां होंदियां ने ते उदों बंदा ना सूरज देखदा वी किन्ने क बजे चढ़ूगा, किधरों
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: धुप निकल,
1: हाँ जी
0: क्योंकि मिट्टी मिट्टी
1: हाँ
0: धुप बड़ी प्यारी लगती है। तो हुण धुप नूं
1: जी
0: देखना कोई पसंद नहीं करदा, हुण कहिंदे कि बस बदल दी टुकड़ी इधर उड़ के उधर
1: हाँ
0: चले गई है।
1: जी
0: जी, ते ओ वाकई मौसम जदों हुंदा है उदों असीं उहनूं इंजॉय नहीं करना, ते असीं फिर दूजी
1: बिल्कुल
0: रुत्त लभदे हां।
1: कुदरत दे रंग ने जी, उहने जिथे चढ़ना उथे पाणा मीं जी।
0: वाकई वाकई जी, बहुत वधिया लगा सर तुहाडे नाल गल करके। तुसीं
1: धन्नवाद
0: सिंगर
1: जी
0: दस दो क्योंकि तुहाडी
1: जी तो
0: पसंद।
1: अपना आंसर आ इहदा कोई भी सुना दिओ जी।
0: शुक्रिया सर, तुहाडी फरमाइश बहुत जल्द पूरी करदे हां। 102.7 MHz यानी कि 102.57 FM ते प्रोग्राम चल रहा जी फोन इन फरमाइश, यानी कि पंजाबी तड़का। तुसीं जिन्ना क समां रह गया ना, मतलब हाले 15 मिनट पए ने, ते 15 मिनट दे विच 2 या 3 कॉल्स और गीत, मैं कोशिश पूरी करनी है कि तुहाडे नाल गल हो सके ते गीत तुहाडी पसंद दे ओ होण जिहड़े मैं तुहानूं दो सिंगर दस्सां। सो जी, अगले सिंगर साडे ने हंसराज हंस और उहनां दा गीत है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

FM band 102.7 MHz और 102.3 103.6 MHz के सभी श्रोता को, सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, हेलो, आदाब, नमस्ते। और प्यार के सफर को शुरू करती है जो कि 1 बजे से 2 बजे तक आपका और हमारा रहेगा। आकाशवाणी अमृतसर के श्रोता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी वेलकम, हेलो, हाय। और ये जो सफ़र है सच्ची में थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, क्योंकि ये बहार जो समय की है इसमें वो प्यार भरे तराने अफसाने गुनगुनाने होते हैं, मैंने नहीं उन्होंने, जिनको हम बेहद बेहद पसंद करते हैं। और गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है, यूं तो हम अपने आप में गुम थे, सच तो ये है कि वहां पर भी जालिम तुम थे। और क्या बात है सच्ची में, अगर तुम किसी को बड़ी शिद्दत से चाहो, प्यार करो, इतबार करो और इंतज़ार करो, और वो वहां पर भी जाए जहां पर तुमने सोचा भी ना होगा कि यहां पर भी ये हो सकता है। मतलब एक्सपेक्ट करो आप किसी को कि यहाँ पर आप होने चाहिए और वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और यही तो है जी वफा, और वही वफा आपकी एफएम रेनबो के साथ, और एफएम रेनबो की आपके साथ। इसीलिए इस प्रोग्राम में प्यार भरे अफसाने जो कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और बहुत सारे ऐसे उस दौर के सिंगर्स हैं जिन्होंने प्यार के गीतों को, अफसानों को ऐसे गुनगुनाया है कि 90s के दौर से लेकर आज तक भी टिल टाइम, मतलब क्या बात है। और जब भी हम थोड़ा सा ज़िंदगी से थोड़ा मायूस होते हैं या हमें कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि वाकई ज़िंदगी बहुत गुलजार है, खुशगवार है और प्यार भरी है।

102.7 मेगाहर्ट्ज ते प्रोग्राम चल रहा जी मिड डे मेलोडीज 102.7 मेगाहर्ट्ज दे नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी अमृतसर दे सारे स्रोते भी इस प्रोग्राम नू इंजॉय कर रहे ने, इस प्रोग्राम दा आनंद माण रहे ने। स्टूडियो दी घड़ी ते 1:10 हो चुके ने। किसी ने बहुत ही कोप कहा है कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए जनाब, बेहिसाब हसरतें ना पालिए जनाब, जो मिला है उसे संभालिए जनाब। और आपको पता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है ज़िंदगी में कि जो हमें मिला है हम उसी में खुश रहें। भाई ज़िंदगी है, चाहना है, आशाएं भी होती हैं, और जो

नहीं मिला उसको पाने की हसरत भी होती है, क्योंकि ज़िंदगी में ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती, और ख्वाहिशों को, सपनों को बुनना, अपनाना, ये तो ज़िंदगी है। कभी कभी अपने से ऊपर उठकर कुछ चीज़ों को जो महसूस करती हैं, जो पाने की ख्वाहिश रखती हैं, और उसको पाने की हसरतों में इतना डूब जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि जो उन्हें मिला है वो उसको जी नहीं पा रहे हैं। जो मिला है उसमें खुश रहिए, उसको भी चाहिए, और जो नहीं मिला उसको पाने की हसरत इतनी रखिए कि जो आपको इजीली मिल सके, अगर आपको सब कुछ घुमा कर गवा कर ही उस चीज़ को पाना है तो दोस्त उस चीज़ को फिर क्या पाना है। 102.7 FM दी प्रोग्राम चल रहा है जी, मिड डे मेलोडीज़, आज रणदीप कौर थोड़े नाल, अगला गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ दे।

जो मिला है उसमें खुश रहिए, उसको भी चाहिए, और जो नहीं मिला उसको पाने की हसरत इतनी रखिए कि जो आपको इजीली मिल सके, अगर आपको सब कुछ घुमा कर गवा कर ही उस चीज़ को पाना है तो दोस्त उस चीज़ को फिर क्या पाना है। 102.7 FM ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼, ਅੱਜ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੌੜਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।

मुझे किसी ने कहा कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं। ऐ दोस्त, मुझे फुर्सत कहाँ है कि मैं ये जो मौसम है उसको सुहाना देखूं। तेरी यादों से निकलूं तभी तो मैं ये ज़माना देखूं। 102.7 F पर आप एंजॉय कर रहे हैं जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। और अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आपको पता है कि कुछ गीत, कुछ यादें कुछ ऐसी होती हैं जो जितनी पुरानी हो, जब भी हम उनको याद करते हैं, जब भी हम उन गीतों को सुनते हैं, तो वो हमें अभी अभी बीती हुई लगती हैं। मतलब उनमें एहसास होता है कि अभी फ्रेश और तरोताज़ी हैं, बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी दोस्तों, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आपने ये गीत एंजॉय किया 102.7 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज। तेरी मुस्कान में छुपी है मेरी जिंदगी की रोशनी, तेरी हर मुस्कान में छुपी है मेरी जिंदगी की रोशनी। तू हंस दे तो सारा जहां महक उठता है, तू कह दे कि तू मेरे साथ है तो सारा जहां महक उठता है, तू हंस दे तो सारा जहां मेरे साथ, मेरे पास, मेरे ख्यालों में बह उठता है। और सच्ची में अगर ऐसी दोस्ती, ऐसा अफसाना और ऐसा तराना एक दूसरे के साथ हो तो जिंदगी हसीन अपने आप खुद ब खुद हो जाती है। और इन प्यारे सफ़र में और इन गीतों के तरानों में कुछ अलग सा ढूंढ के लाई हूँ मैं। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर बस कुछ पलों में। याद आएगा आपको कुछ ना कुछ तो महसूस होगा। जी, पुराने गीत और पुरानी यादें, मतलब उस दौर की, उस ज़माने की वो फिल्में जो हम कभी नहीं भुला सकते। इन फिल्मों को, इन गीतों को जितना भी हम सुने देखे, मतलब लगता है कि अभी ये तरोताज़ा ही है। कुछ तो समझ आता है इनका हमें कुछ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी दोस्तों, कंटिन्यू कर दिया जी अपना प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। और तुहानू पता है कि मेलोडीज़ के रंग किन्ने प्यारे ने, मतलब जिदा जिदा समा अगे वधदा जांदा ना, उन्ने उन्ने प्यारे रंग जिहड़े साडे उपर साडी कन्नां दे विच, मतलब उपर जिहड़े प्यार दे रंग ते कन्नां दे विच जिहड़े सिंगर्स दे रंग गुनगुनाए जांदे ने, उह है रंग मिड डे मेलोडीज़। स्टूडियो की कड़ी तो 1:50 हो चुके हैं, तो जी ये सफ़र जड़ा है ना बड़ी छेती बीत जाता है बई। हाले हुणे तो 10 बजे से, तो हुणे ही जी मतलब 2 बजन वाले ने। सफ़र लंबा

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दिल आज शायर है विद आरजे रमनीश। ते थोड़े आरजे ने ना श्रोतियां बेनती की सी कि श्रोतियां कि यार आ नंबर ते कुछ भेजो। ते बहुत सारे श्रोतियां ने सानू बहुत सारा कॉन्टेंट भेजता है अज दे लई। सो शुरू करते हैं। सब तो पहला है कुलविंदर टेलर VPO कंडोला नियर आदमपुर। गुड आफ्टरनून रमनीश सर। गुड आफ्टरनून जी सर। लिख रहे ने कि तेरी बेवफाई का गम तो एक बहाना था, तेरी बेवफाई का गम तो एक बहाना था, असल दर्द तो ये था कि तुझ पर यकीन

रमनीश सर, गुड आफ्टरनून जी सर। लिख रहे ने कि तेरी बेवफाई का गम तो एक बहाना था, तेरी बेवफाई का गम तो एक बहाना था, असल दर्द तो ये था कि तुझ पर यकीन बहुत था। तू चला गया तो जिंदगी नहीं रुकी मेरी, तू चला गया तो जिंदगी नहीं रुकी मेरी। अच्छा जी, बस मुस्कुराने का अंदाज बदल गया, बस मुस्कुराने का अंदाज बदल गया। क्या बात है सर, क्या बात है जी, क्या बात। सानू लिख के भेजा सी कुलविंदर टेलर जी ने, क्या बात सर। उस तो बाद साडे कोर स्रोते आ सत श्री अकाल दिलाज शायर रमनीश सर जी, बलविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे ने कि दिन हुआ है तो रात भी होगी, कटा चाई है तो बरसात भी होगी, बिछड़ने का गम नहीं करना, बिछड़ने का गम नहीं करना जानम, जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात भी होगी। क्या बात है जी। उस तो बाद साढ़े अगले सरोते लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी लिख रहे ने दिला दिल के बाजार विच कि दिल के बाजार विच दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार विच दौलत नहीं देखी जाती, हो जावे मोहब्बत ता शकल नहीं देखी जाती, एक ही बंदे दे उपर लुटा के अपना सारा कुछ, एक ही बंदे दे उपर लुटा के अपना सारा कुछ, पसंद हो चीज ता कीमत नहीं देखी जाती। क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे गल्लां असल च दिल दियां है दोस्तों, सानू पता है हुण जिन्ना सानू प्यार होना है उन्ना हो ही जाना है, आपां ना नहीं कह सकते उहदी शकल इदां, सूरत इदां, उहदा मन इदां। उस तों बाद साढ़े खोर सरोते मेन बाजार पिंड चौको जिला बठिंडा तो बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जसल लिख रहे ने कि किन्ने सुखा दुखा वाली जिंदगी विच मौसम लंघदे देखे मैं, किन्ने सुखा दुखा वाले जिंदगी विच मौसम लंघदे देखे मैं, जिंदगी जिउणी लई जिहड़ी पैंदी है लड़नी ऐसी भी दिन जंग दे देखे मैं, जो कहिंदे सी नाम मेरा दा सिक्का है चलदा, भीख गलियां दे विच मंगदे देखे मैं, कोई यारी पिछे जान वारदा कोई पा के यारी करे गदारी, जिंदगी विच बंदे हर ढंग दे देखे मैं, मेरे वर्गा कोई नहीं एथों जो कहिंदा सी कमरे दे खूंजे विच पए खंघ दे देखे मैं, ज्यादा नाल आकड़ा अपनियां तो दूर हुंदे, मंग माफिया थोड़े रिश्ते गंढ दे देखे मैं, दे के खून कई अपना जान बचाउण बगाने दी, कई दौलत खातर खून दे रिश्ते सिक्के टंग दे देखे मैं, कई अपनियां दी खातर ठोकर मारन दौलत नू, कई अपनियां दे खून नाल हथ रंग दे देखे मैं, देखी चल जसला एह लीला भगवान दी, कई सुबह सवेर पला सरबत दा मांग दे देखे मैं। क्या बात है जी। क्या बात है सर, क्या बात है। जसवंत ए सानू भेजा है बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जसल। देखो जी आखिर च उन्होंने मेंशन किया जसला, कहना मतलब उन्होंने कास्ट उन्होंने लिखा। क्या बात है सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद, तुसीं इन्नियां प्यारियां प्यारियां जिहड़ियां ना लाइनस सानू भेजियां ते बहुत ही मज़ा आंदा पढ़ के, सब तो पहला तो यही गल है। उस तो बाद साढ़े अगले सरोते गली अफीम वाली प्रेम मार्केट बठिंडा अमरजीत जसल चूची, उन्होंने लिखा है कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंद की भी, कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंद की भी, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। वैसे इन सोच सकते हाँ यार, नवी नवी डूंगाई वाली गल्ला, वाह

प्रोग्राम चल रहा दिलाज शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश ते तुझे सुन रहे एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों साडे नेक्स्ट सरोते लिख रहे ने गुड आफ्टरनून रिटन बाय गंगनप्रीत कौर लिव इन तांडा। तांडे तो आए ने ते सरोते साडे ते लिखा है कि उम्मीदों के बोझ नीचे दब रही है जिंदगी, उम्मीदों के बोझ नीचे दब रही है जिंदगी। एक हम हैं जो अपनी यादों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग आगे निकल गए नए रास्तों की तलाश में, लोग आगे निकल गए रास्तों की तलाश में और हम पुरानी दहलीज पर ही ठहर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा जी गगनप्रीत कौर जी। उस तो बाद साडे सरोते रणबीर बाई जी, मिठी सत श्री अकाल जी। अच्छा रणबीर, मैं रणबीर, हाँ जी हाँ जी दोस्तों, मैं आरजे रणबीर, पर उन्होंने सही करता रमनीश जी लिखता जी, सिर्फ मजाक सी जी। रमनीश बाई का मैसेज कबूल करना, अच्छा गरीब बाई का, अच्छा इदा ना कहो भीरे, इदा ना करो, शोआ सारे साडे लिए बराबर है। तो लिख रहे ने कि चांदनी चांद से होती है,

प्यारे भी एक से होते हैं हजारों से नहीं। खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से, सच्चे छिप नहीं सकते बनावट के फूलों से। पिंड तेजा, अच्छा मोहाडी अंबाला हरियाणा से मनसी लाल संधु, मोहन प्यारे बूटा मंडी जलंधर। क्या बात है सर, क्या बात है जी। मैं तो थोड़े उत्थे भी खो गया सी, तुसी लिखिया अब थोड़े एड्रेस ते खो गया सर मैं तो जी। क्या बात है जी, बहुत बहुत थोड़ा जी आया नु सर, साडे साडा बहुत बहुत स्वागत है। उस वा साडे अगले सरोते, दोस्त उसे बनाओ जो दिल से सच्चा हो, उसे नहीं जो देखने में अच्छा हो। सर जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, सारे धीमान फैमिली को बहुत बहुत जी धन्यवाद सर थोड़ा। देखो जी हाँ दोस्तों, इन्नी खुशी होती है जदों कहते ना साड़ी ऐसी फैमिली के भी नाम बोलते ना, साडे कुछ दे सरोते भी आते हैं। क्या बात है जी। सो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है, तो जड़ा टाइम है वो भी हुन अगे लंघ रहा है, तो जड़ा ये प्रोग्राम है सिर्फ 2:30 तक ही होगा, तो हुन टाइम हो चुका है 2:28। तो हुन दोस्तों बस एक प्यारी जी आवाज़ आप जरूर सुनांगे, पर उस तो बाद आप जी इजाजत लवेंगे।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को

0: बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
0: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
0: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
0: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
0: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
0: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
0: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूं, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में यह घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने सुने सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे भागो,
1: अरे जाओगे, अरे भागो, अरे अरे सिपाही आ गए, अरे अरे बाहर जाओगे, अरे जाओगे, अरे भागो, अरे छुप जाओ,
2: अरे मैंने कुछ नहीं किया,
0: भाया काबू।
3: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बढ़े

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर

0: डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
1: हम वापस लौटना चाहते हैं।
0: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
2: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
3: मैसिडोनिया चलो,
2: वापस चलो
0: सम्राट। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
4: सबर करो साथियों।
5: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए। अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
0: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: धन्य हो
4: आचार्य।
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। हमारा आज का विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी, यानी मोटापे से बचाव के क्या हैं उपाय और कैसे करें खुद को मोटापे से दूर ताकि हम रह सके स्वस्थ और तंदुरुस्त। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से अपने आज के इस खास विषय में जो है डीलिंग विद ओबेसिटी, और इस विषय पर हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित छाबरा, जो है एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ, और डॉक्टर निमि रस्तोगी जो है गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। अगर इस खास विषय से जुड़े आपके पास भी हैं सवाल तो आप हमें

0: करिए ना कॉल, और इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 01123421080 और 2342-1082। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 2342-1080 और 2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेजेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर निमि, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू पूजा।
2: थैंक यू पूजा। और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सशक्त माध्यम पे इतना महत्वपूर्ण विषय हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी,
0: धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सरल शब्दों में अगर हम समझें, ओबेसिटी यानी मोटापा क्या है?
1: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
0: जी।
1: और आप ये समझ सकते हैं कि इस समय ओबेसिटी इतनी प्रेवलेंट है
0: जी,
1: हालांकि पहले भी थी, बट इसका कंसेप्ट इस समय इतनी इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब ओबेसिटी से रिलेटेड हमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस पता लगती हैं
0: जी।
1: तो हर इंसान चाहता है कि ये पता लगे कि वो सच में मोटा है कि नहीं। तो मोटापे की डेफिनेशन सही होना ज़रूरी है। बेसिकली हम मोटापे को BMI के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली हाइट और वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, बट इन जनरल अगर आपका BMI 23-25 है, आप कह सकते हैं रिलेटिवली ओके, बट बियॉन्ड 25 आप ओवरवेट या ओबेसिटी में आ जाते हैं। बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 26.5 और 27। उसके बाद हमें इसको ओबेसिटी ग्रेडिंग की क्लासिफिकेशन में हम इसको इंक्लूड करते हैं।
0: जी जी। डॉक्टर निमि, आप कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगी?
2: पूजा, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि अगर 5-6 साल पहले 24% लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा पाया जाता था, तो अब धीरे धीरे वो बढ़ के 30% से ऊपर हो रहा है। और शहरी इलाकों में तो आप सोचिए बिल्कुल एपिडेमिक ही आ गई है मोटापे की। अब जो है 42-43% लोग अपने तय सीमा से वजन से ज़्यादा हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत अलार्मिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है ये। और इसीलिए मैंने आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब जानेंगे तभी तो उसका निदान कर पाएंगे।
0: जी जी। श्रोताओं, सुना आपने, डॉक्टर निमि ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है जो है डीलिंग विद ओबेसिटी। और इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमि रस्तोगी। और आप हमें इस विषय पर कोई सवाल है, आपके पास कोई क्वेरीज है, तो कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर हैं 01123421080 और 2342-1082। और व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लें 9868107070। डॉक्टर अमित, कौन कौन से कारणों से कोई व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होता है?
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
0: जी।
1: देखिए, ओबेसिटी का मतलब ये जरूर हमने बताया कि वेट गेन होना, एक वेट गेन की हमने लिमिट भी सेट कर दी
0: जी।
1: बट भी ये देखा जा रहा है कि इस समय जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दे आर द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा जीवन शैली
0: जी।
1: हम लोगों के पास ना तो रात में सोने का टाइम है, ना प्रॉपर रेस्ट का टाइम है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फूड टू ईट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। और इस वजह से हमारे कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जैसे लेप्टिन, रेलिन, इनका भी डिसरेगुलेशन हो जाता है। अदरवाइज और दूसरे हार्मोन्स हैं स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दीज डेज।
0: इस पर हम सर आपसे विस्तार में जानकारी लेंगे। जी जी जी।
1: अदरवाइज फीमेल्स में PCOD की प्रॉब्लम, थायराइड डिसऑर्डर्स, कुशिंग डिसऑर्डर जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जो कि नॉर्मली हम फाइंड आउट कि जब भी डायबिटीज ओबेस पेशेंट आता है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस आल्सो। जेनेटिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इस पर भी विस्तार से जानकारी लेंगे सर आपसे जी। एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, पहले इनका कॉल ले लेते हैं सर।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ
0: जी।
3: मेरे 3 क्वेश्चन हैं
0: जी।
3: पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर कोई बच्चा या बड़ा आदमी मोटा हो जाता है, मोटा खाने से नहीं होता है, लोग ये कहते हैं कि तुम केला खाओगे, ये खाओगे तो मोटा हो जाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज से के खाने से आदमी मोटा नहीं होता है, तो उसका वेट कैसे कम किया जा सके, एक तो ये बताए। नंबर 2, जो आज लड़कियां या लड़के 20-22 साल के हो जाते हैं, शादी के काबिल हो जाते हैं, वो अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग पे चले जाते हैं, तो डाइटिंग करना क्या उससे वेट लॉस होता है? क्या शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ जाती हैं? क्या उसके विटामिन लॉस होते हैं या नहीं होते हैं? और

0: दूसरा क्वेश्चन ये है, जो आदमी 100 किलो से ऊपर होते हैं या 80-90 किलो से ऊपर हो जाते हैं और वो ऑपरेशन कराते हैं, और ऑपरेशन कराना क्या रिस्की है या रिस्की नहीं है, या ऑपरेशन कराना ठीक होता है? भाई ये तीन क्वेश्चन
1: जी। डॉक्टर साहब
2: जय किशन जी, आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं बहुत ही शॉर्टली जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल जो पूछा कि ये जो बच्चे जो आजकल कुछ भी खा लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो हेल्दी फूड है वो हम सब बच्चों को बोलना चाहिए कि वो खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगेन एक्सरसाइजेस की कमी, स्पोर्ट्स का टाइम कम हो गया है, तो इस वजह से इनको कुछ भी खाने पे जल्दी वेट गेन करने लगते हैं
1: जी।
2: तो इनको जो भी गुड फ्रूट्स दें, फाइबर रिलेटेड डाइट दें, और अच्छा फ्लूड इनटेक भी बहुत कम हो गया है, एंड दे टेक लॉट ऑफ फैट, फैटी फूड्स आल्सो। तो हमें बच्चों को ये करना चाहिए कि इन चीज़ों को मतलब फैटी फूड्स को या स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर्स, ये वाली चीज़ें ज़्यादा बोलें
1: जी। जी
2: रिगार्डिंग दो आपने अदर क्वेश्चन पूछा कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो नॉर्मली हम सभी लोगों को बोलते हैं कि विटामिंस रिलेटेड चीज़ें जैसे अच्छे से खाएं, जैसे मैंने भी बताया फ्रूट्स रिलेटेड। तो अगर आप वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा करते हैं और बिल्कुल न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फेस पे रिलेटेड जो झुर्रियों की बात कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट है आपका 150-200 किलो और उसमें आप 40-50 किलो कम कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट आज की डेट में हम मेडिकल साइंस रिलेटेड बहुत ही मॉनिटर्ड ग्रेजुअल वेट लॉस कराते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ एंड हेल्दी, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है
3: जी। डॉक्टर अमित ने जो कहा उसमें तीन या चार कहिए शाश्वत सच मैं जोड़ देती हूँ अपनी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट बढ़ाना बहुत आसान है, वेट घटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो अगर आपके हाथ में है तो बढ़ने ही ना दीजिए। दूसरा ये कि क्रैश डाइट्स नेवर वर्क, कभी भी क्रैश डाइट काम नहीं करती है। थोड़े समय के लिए कर सकती है बट ज्यादा उसका अच्छा असर नहीं है। और तीसरा ये है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की समस्या नहीं है कि बच्चे बैठे रहते हैं, इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और चौथा कि नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं ढंग से तो आप वेट नहीं घटा सकते
1: जी। इस पर मैम हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। मैम अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात करें तो उनमें मोटापे का क्या कारण होता है?
3: देखिए जनरल कारण तो डॉक्टर साहब ने बताया है आपको। अब जहाँ तक महिलाओं की बात है तो मेरा कार्य क्षेत्र ही महिलाओं के बीच में है, 15 से 70 साल के बीच में। तो महिलाओं के साथ और बड़ी ट्रेजेडी है कि उनको कुदरत ने उनके शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उनको कुछ फिजियोलॉजिकल अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ यू नो द रेसेस। तो उनको मासिक धर्म भी होता है, उनको प्रेगनेंसी होती है, फिर बच्चे को दूध पिलाना होता है, फिर मेनोपॉज होता है, गर्भनिरोधक भी उनको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन के साथ, यानी कि जो केमिकल लोचा जिसे कहते हैं उसके साथ काफ़ी खिलवाड़ करती हैं। कभी कोई हार्मोन ऊपर हो जाता है, कभी कोई नीचे हो जाता है, कभी उनको क्रेविंग्स होने लगती हैं तो वो बिंज ईटिंग करती हैं। प्रेगनेंसी में तो सब लोग उन्हें ठूस ठूस के खिलाते हैं, बच्चा हो जाता है तो उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी भूख मर जाती है। तो भाई महिलाओं का तो हाल बेहाल है
1: जी।
3: लेकिन सब कुछ मैनेजेबल है अगर आपको अवेयरनेस हो।
1: तो सुना आपने डॉक्टर निमी ने कहा कि सब कुछ मैनेजेबल है अगर आप अवेयर हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, और इसमें अगर आपकी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो नंबर हैं 2342108 और 2342108। व्हाट्सएप के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। इस खास विषय पर बातचीत जारी रहेगी, पहले सुनते हैं ये गीत।

0: लाइव रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं डीलिंग विद ओबेसिटी, यानी मोटापे से बचाव के क्या हैं उपाय और कैसे खुद को मोटापे से रखें दूर, ताकि हम रह सकें स्वस्थ और तंदुरुस्त। और इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी बीमारियों का खतरा ओबेसिटी से बढ़ता है।
1: बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्वेश्चन है क्योंकि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है, ग्रेजुअली हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व करने लगते हैं
0: जी।
1: और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जेनेटिक हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ सामने आ जाती है।
0: टाइप 2 डायबिटीज़,
1: थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है
0: जी।
1: कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जैसे वेट बढ़ता है तो वेट का डिपोजिशन भी होता है आर्टरीज में, तो दीज पेशेंट्स आर ऑल्सो प्रोन फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स
0: जी।
1: इसके अलावा वेट बढ़ने पे जॉइंट्स में इफेक्ट आता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है
0: जी।
1: और वेट बढ़ने से आपने देखा होगा स्नोरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी बोलते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: फिर ये फैट का डिपॉजिट होता है अलग अलग एरियाज में, जिसमें मोस्ट कॉमन एरिया है लिवर, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। पहले इतनी कॉमन नहीं थी, केवल बहुत ही ओबीस पेशेंट में हम लोग हमारे पास आते थे। अब इवन वी सी कि इंडियन पेशेंट में खास तौर से सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, मतलब फैट हमारे पेट में ज़्यादा जमता है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज।
0: इसका रीज़न क्या है सर?
1: हमारे जो जेनेटिक मेकअप इतना ज़्यादा प्रीडिस्पोज है कि वी टेंड्स टू हैव द हायर डिपोजिशन ऑफ फैट ओनली इन द सेंट्रल पार्ट, जिसे हम विस्ट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये विस्ट्रल और सेंट्रल ओबेसिटी इस तरह वर्क करती है कि दे एक्चुअली कॉसेस द डिपोजिशन इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑल्सो।
0: ओके,
1: तो इसलिए ये देखा गया कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में, जैसे कि US में, UK में, वहाँ पे दे आर ऑलरेडी हैविंग वेरी हाई BMI, मोटे रहते हैं, पर कार्डिक प्रॉब्लम बहुत लेट होती है। हम लोग जिसको बोलते हैं बिल्कुल ठीक दिख रहा है ये, बस सेंट्रली उसका वेट ज़्यादा है, दे आर एक्चुअली मोर प्रोन फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हम लोग बहुत अर्ली फेज में इंटरवेंशन करना चाहते हैं ताकि जल्दी वो फैट रिड्यूस करके नॉर्मलाइज हो पाए
0: जी। डॉक्टर निमी, पेट फूलना, जैसे सर ने बताया लगातार सांस फूलना, पेट का आकार बढ़ना, अत्यधिक थकान महसूस होना, ये भी ओबेसिटी के अलार्म साइंस में शामिल है, क्या कहेंगे आप?
2: डेफिनेटली ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है ये हम वेमेन में भी देखते हैं
0: जी।
2: और अगर आप शुरुआत से चलें तो ये कॉज एंड इफेक्ट दोनों है, यानी कि वेट बढ़ने से ओबेसिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर से वेट बढ़ जाता है, तो इंसान एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। इट्स लाइक कैच 22 सिचुएशन, लाइक PCOD ही ले लीजिए
0: जी।
2: वजन का गेन करना PCOD का एक कारण भी है और एक उसका इफेक्ट भी है
0: जी।
2: आप हमेशा ये PCOD की पेशेंट को यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना वजन

0: घटाइए। अब यंग लड़कियां हैं उस एज में नहीं होता पॉसिबल, तो हम उनको बैठ के जब समझाते हैं कि देखिए ये जो फैट लेयर है यहाँ आपका हार्मोन कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बट समझ आ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए मैं तो ये कहूँगी कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ यंग लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं जिनको आप PCOD के लक्षण देख रहे हैं, तो आप उनको हेल्दी खाने के लिए प्रेरित कीजिए, घर का बना खाना खिलाइए और उनको मूवमेंट के लिए इनकरेज कीजिए जो कि इसका मेन स्टे है।
1: जी मैम, आपने PCOS की बात की, PCOD और PCOS में क्या डिफरेंस है, और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसके बारे में भी हमें बताइए कि ये मोटापा बढ़ाने में कितना सहायक होता
0: पूजा,
1: है।
0: आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरी OPD में 10 पेशेंट्स आते हैं तो 3 या 4 केसेस ऐसे होते हैं जो या डायरेक्ट PCOD है, या PCOD की वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा, या PCOD की वजह से मेनोपॉज जल्दी हो गया है,
1: जी
0: एंड तमाम तरह की उसका बेसिक कारण PCOD होता है। और
1: जी
0: PCOD एक कारण नहीं है, एक सिंड्रोम है
1: जी
0: जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है जो कि मोटापे का भी एक कारण बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको अगर हम शुरू में ही रिवर्स कर दें तो
1: जी
0: हम लॉन्ग लास्टिंग से रिकवरी पा सकते हैं। अदरवाइज हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, ठहरने में, मेंटेनेंस में, बच्चे में भी इशूज आ सकते हैं, आगे चल के डायबिटीज़ हो
1: जी
0: सकता है। तो हम अपने लिसनर्स को डराना तो नहीं चाहेंगे, बट
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: PCOD का पूरी तरह से इलाज पॉसिबल
1: मैम,
0: है।
1: इसके लक्षण क्या क्या हैं?
0: सो PCOD में नॉर्मली एक्ने आते हैं फेस पे, फेशियल हेयर आते हैं, पीरियड्स लेट हो जाते हैं, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, और वज़न बढ़ता है, और
1: इरेगुलर
0: जनरली
1: पीरियड्स।
0: इरेगुलर पीरियड्स हैं कि 2-2 महीने तक नहीं आ रहे हैं। और अक्सर हमने एक और बात देखी है, डॉक्टर अमित मेरे से सहमत होंगे कि PCOD केसेस में जब हम पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री तो कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट डायबिटिक निकलता ही है। तो
1: उसकी वजह
0: इसका
1: से PCOS PCOD बढ़ता है क्या? हो सकता
0: डेफिनेटली
1: है
0: उसका एक लिंक है
1: लिंक है। जी
0: मैकेनिज्म का, जिसका कारण एक ही है दोनों का,
1: जी जी
0: लेकिन PCOD फिर वो उजागर हो जाता है हमारी यंग
1: जी
0: लड़कियों में।
1: जी महिलाओं पर मैम।
2: हम
1: और जी जी सर बताइए।
2: इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ,
1: जी
2: जैसे वेट गेन होता है एंड फैट सेल डिपॉजिट्स होते हैं,
1: जी
2: तो PCOD का एक पार्ट है कि टेस्टो और ईस्ट्रोजन का जो लेवल
1: हम
2: और रेशियोज चेंज होने लगते हैं
1: हार्मोन्स के। जी
2: हॉर्मोन्स के, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये परसिस्ट करता रहता है। वेट रिड्यूस होने से वी विल रिड्यूस द फैट सेल्स,
1: जी
2: तो हॉर्मोन्स का चेंज ओवर रिड्यूस हो जाता
1: जी
2: है। और दिस इज़ अ वेरी राइट कि बहुत सारे पेशेंट जेनेटिक हिस्ट्री में भी डायबिटीज़ होते हैं, और PCOS भी आगे चल के जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं वो भी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते
1: हो
2: हैं।
1: सकते हैं। जी
0: यस, पूजा,
1: डॉक्टर
0: कोविड के टाइम पे बहुत
1: जी
0: केसेस वर्सन हुए
1: जी
0: क्योंकि बैठे रहे लोग, बाहर नहीं निकलना हुआ। सो अब जो है, अब उनके असर हम सामने देख
1: देख
0: रहे
1: रहे हैं।
0: हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
3: हेलो,
1: जी
3: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सपना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी
3: अभी जैसे मैम ने जिक्र किया कि वेट गेन करना इज इजियर देन लूजिंग द वेट,
1: जी
3: मतलब मैम मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, मैं पिछले 6 साल से मेरा वेट कम हुआ है और
1: अच्छा
3: आई एम 53 नाउ।
1: जी
3: और 6 साल पहले मेरा वेट कम होना शुरू हुआ हुआ 58 से आई वेंट डाउन टू 39 एंड नाउ आई एम 45। इसके
1: जी
3: ऊपर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है,
0: ओके okay, आप
3: तो मुझे हेल्प
0: मैं ये तो
3: चाहिए।
0: नहीं कहूँगी कि आप फॉर्चुनेट हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई ना कोई पैथोलॉजी का एहसास हो रहा है। तो प्लीज़ अपने चेकअप कराएं, वेट घटना भी अच्छी बात नहीं है, आपको अपनी हाइट और वेट के और उम्र के हिसाब से एक तय सीमा में ही रहना चाहिए। प्लीज़ अपने थायराइड लेवल्स चेक कराएं, आई एम श्योर आपने कराए होंगे, बिकॉज
3: हाँ जी
0: थायराइड
3: बिल्कुल,
0: जब
3: मैंने
0: ओवर
3: कराया,
0: एक्टिव
3: सुगर भी
0: होता
3: लिया
0: है
3: है।
0: तो वज़न जल्दी जल्दी बढ़ता है। और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिस पे डॉक्टर अमित प्रकाश डाल सकते हैं, बट इवन दैट इज़ नॉट हेल्दी, आपको ज़रूर इसकी स्क्रीनिंग करानी
1: जी
0: चाहिए।
1: डॉक्टर अमित आप क्या कहेंगे?
2: या सी, अगर वेट आपका पहले से ही रिड्यूस्ड है, वो
1: जी
2: मेंटेन है, एंड यू वांट टू गेन वेट, दैट्स अ डिफरेंट इशू।
1: जी
2: इन दैट सिनेरियो वी नीड टू वर्कआउट, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड अदर चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। बट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं वेट, जैसे डॉक्टर निमी ने बताया है कि डेफिनेटली थायराइड द मोस्ट कॉमन रीज़न, बट अदर रीजन्स भी हैं, जैसे कि आप न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज हैं, विटामिन डिफिशियंसीज हैं, इवन एड्रिनल इनसफिशियंसीज आर ऑल्सो देयर, एंड कुछ लिवर एंड किडनी रिलेटेड इशूज़ भी हो सकते हैं।
1: जी
2: तो पूरा वर्कअप डेफिनेटली आपको करवाना
0: मेरे ख्याल
2: चाहिए।
0: से बुलीमिया और एनोरेक्सिया भी कारण हो सकते हैं
2: या
0: स्ट्रेस।
2: डेफिनेटली इफ दे आर रियली वेरी स्ट्रेस्ड आउट।
1: जी जी जी
2: सो
1: डॉक्टर निमी, हम महिलाओं की बात कर रहे थे, तो महिलाएं अलग अलग उम्र में अलग अलग बदलावों

0: से गुजरती है, जैसा आपने बताया अभी, ये कितना असर करता है वजन बढ़ाने में? और इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि गर्भावस्था संबंधी समस्याएं होती हैं जो ओबेसिटी से, उन दोनों के बारे में बताइए।
1: जी देखिए, गर्भावस्था में नेचुरली एम्फेसिस किया जाता है कि आप दो लोगों के लिए खाइए, लेकिन वो दो लोग में से जो दूसरा इंसान जो भी आपके पेट में पल रहा है वो तो मुश्किल से 1-2.5 किलो का है, तो उसके लिए आपको डबल द कैलोरी नहीं खानी, आपको क्वालिटी डाइट लेनी है ताकि बच्चे के अंग अच्छे से बने, उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपको एनीमिया ना हो। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि आपकी जो है 2000 से 4000 कैलोरी कर लीजिए। तो हमारे ना रेफरेंसेज ही गलत हैं शुरू से। हम ये सोचते हैं प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ गया, कोई बात नहीं, सबका बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हमें अपनी रेफरेंसेज रीडिफाइन करनी होंगी कि प्री प्रेगनेंसी लेवल पर अगर हम वापस सकते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज लाती हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि उसके फायदे आप आगे वाली उम्र में जरूर महसूस करेंगे, ऐसा मेरा कहना है।
0: डॉक्टर निमी, अगर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वजन कंट्रोल में रहे और जो प्रेगनेंसी की वजह से वजन बढ़ा है वो भी कंट्रोल?
1: पूजा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होता है, आपको जब आप लैक्टेट करते हैं, आपको बच्चे को दूध पिलाना है, एक तो पहली बात दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए नहीं, वो माँ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज उसकी यूट्रस वापस अपनी शेप में आ रही है, उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट डिसॉल्व होके मिल्क प्रोडक्शन में उसका कैलोरीज लग रही हैं। तो उस स्टेज पे अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक को थोड़ा कम कर लें, अपने पोर्शन को कंट्रोल कर लें, तो हो ही नहीं सकता कि वापस आप अपने नॉर्मल वेट पे ना आए। हाँ, थोड़ी बहुत टोनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज लैक्सिटी हो जाती है एब्डोमिनल मसल्स की, तो थोड़ा बहुत वर्जिश आप करेंगे तो वापस उसी शेप में आ सकती हैं। और लोग आते हैं तो जैसे पहले बोलते थे 10 से 12 किलो आपको गेन करना है, नहीं, अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो प्रेगनेंसी में आप 8 किलो, 6 किलो, 7 किलो में भी आप अच्छे से हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर वापस अपने शेप में आ सकती हैं।
0: जी, और डॉक्टर साहब, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अलग अलग जो स्टेजेस हैं महिलाओं के, उनकी एज के, उनमें अलग अलग तरह के बदलावों से वो गुजरती है, कितना असर करता है वजन बढ़ाने में ये?
1: देखिए, मेनोपॉज में हमने देखा, और आजकल हो क्या रहा है कि मेनोपॉज जल्दी हो रहा है, लाइक 45, 44, 43 पे मेनोपॉज हो जा रहा है।
0: तो इसका वही लाइफस्टाइल
1: है, हॉर्मोनल चेंजेस हैं, पीसीओडी है, बिकॉज ओवरीज जो है जल्दी अपना काम बंद कर रही हैं, सो इट्स वेरी अलार्मिंग, बट इस पे फिर कभी एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मेनोपॉज में यूजुअली बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, तो फैट डिपोजिशन ऑन द थाइज, ऑन द ब्रेस्ट, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आता है। और अगर आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, अगर आपकी फैट पॉकेट्स ही बनी हुई है उस एरिया में, तो फैट जाके वहीं पे बढ़ने लगता है, तो ये बहुत कॉमन वो है, बट देर आर वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल है।
0: जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज हम जान रहे हैं हमारे खास विषय में, जो है डीलिंग विद ओबेसिटी। अगर आपके पास भी है ना कोई सवाल तो आप हमें करिए कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर हैं 2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 9868-107070। डॉक्टर साहब, आप दोनों से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं हमें। अब एक गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और ओबेसिटी से जुड़े सवालों पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी, और इस पर हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। मैम, हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह चौहान हमें लिख रहे हैं कि वर्तमान में जो खान पान हो गया है, जैसे फास्ट फूड, क्या ये मोटापे का मुख्य कारण है? और दूसरा, वर्कआउट ना करना, क्या ये भी ओबेसिटी का ही मुख्य कारण है?
2: अम्मी जी, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जिस तरह का खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, या फिर उसको आपको सिग्नल दे रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम एज अ रूल ऑफ थंब अपने पेशेंट से कहते हैं कि 80% घर का बना खाना खाइए। अब आप मुझे बताइए अपने कलीग्स में देख के कि कौन लोग ऐसे हैं जो 80% खाना घर का बना खाते हैं
1: जी।
2: और हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और इस नूडल्स वगैरह को क्यों हम दोष देते हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में भी जलेबी, रसगुल्ले, कचौड़ियाँ, समोसे, ऐसी चीज़ों की फरमाइश की जाती है। तो ये हिंदुस्तानी जंक फूड भी अच्छा तो नहीं है। और एक ही जगह पर बैठे खाना खाना और उसके बाद उसको स्पेंड ना करना, उसकी कैलोरीज को स्पेंड ना

0: करना, ये तो कहीं ना कहीं आपको असर दिखाएगा ही, तो ये तो
1: जी
0: जाहिर सी बात
1: जी
0: है।
1: जी जी मैम जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती हैं कि डॉक्टर फैटनेस कुड बी ऑफ टू रीज़न इन वुमेन. फर्स्ट इज़ ड्यू टू जंक फूड एंड सेकंड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस. बट ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस हाउ द फैटनेस रिफ्लेक्ट्स इन द बॉडी एंड विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
0: देखिए, जंक फूड की जहाँ तक बात है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले दो खाने हैं। तो अगर आप कार्ब्स खा
1: जी
0: भी रहे हैं तो आप उन खानों को खाइए जो आपके शरीर में कम घुलते हैं।
1: जी
0: और मैं तो देखिए, मैं ये एडवाइस देती हूँ कि आप अपने खाने में से कार्ब्स को कम ही कर दीजिए।
1: जी
0: और अगर खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट के बाद चलना ज़रूर है। लेटेस्ट रिसर्चेस ये कहती हैं कि आप अगर खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं या सो जाते हैं तो आपका कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फैट ज़्यादा होता है।
1: जी
0: तो आप 30 मिनट 40 मिनट की वॉक कर लें, खाना जल्दी खा लें, तो वो आपको चर्बी के तौर पर नहीं लगेगा।
1: जी
0: एक सिंपल सा हैक है, वो आप अपना सकती हैं। और प्रोटीन, प्लीज़ मैदा से बनी जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको जहर छोड़ समझ के छोड़ दीजिए।
1: जी
0: चीनी से बनी जितनी भी चीज़ें हैं आप ये मान लीजिए, लिख लीजिए बड़ा बड़ा अपने सामने, चीनी एक तरह का जहर है, मैं चीनी नहीं खाऊंगा।
1: जी
0: ये बहुत एक्सट्रीम लग रहा है बट हाँ ऐसा है, चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब जितने कोल्ड ड्रिंक जितने जूसेस आप सोचते हैं बड़े अच्छे हैं, नहीं, उनको छोड़ दीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन पर ध्यान दीजिए। और प्रोटीन का बड़ी मज़ेदार वाक्य सुनाती हूँ पूजा। मैं एक पेशेंट से मैं कह रही थी कि देखिए प्रोटीन खाइए, तो बोलिए प्रोटीन पाउडर तो बड़े महंगे होते हैं। अरे भाई, मैं पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ,
1: जी
0: आपके किचन में जो खाना बनता है उसमें जो प्रोटीन है उसको खाइए। दालें हैं जिस तरह से,
1: जी
0: दूध से बनी चीज़ें हैं, और जो मोटा अनाज है उसमें भी प्रोटीन होता है।
1: जी
0: क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, प्रोटीन के बारे में जानकारी कम क्यों है?
2: या एक्चुअली प्रोटीन नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो खाने में खाते हैं वो नॉर्मली प्रोटीन की डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि हम जो हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है, जैसे लेट्स सपोज 100 kg ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड,
1: जी
2: और 100 to 125 और 150 g, बट हम लेते नॉर्मली प्रोटीन कम है क्योंकि हमारी हैबिट है कि कुछ लोग तो एग नहीं खाते हैं या फिर कुछ दाल नहीं खाते हैं। तो ओवरऑल हमें एक प्रॉपर प्रोटीन बेस्ड डाइट का एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए एंड शुड इंक्लूड मोर ऑफ दैट।
1: जी
2: जब ये मिसिंग हो जाता है, जैसे पर्टिकुलरली जो जिम गोइंग पर्सन या जिनको बहुत हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, देन दे कैन ऐड ऑन द एक्स्ट्रा प्रोटीन फ्रॉम आउटसाइड।
1: जी डॉक्टर साहब आशा पाठक हमें नीदरलैंड से लिख रही हैं कि वो डायबिटिक और थायराइड पेशेंट हैं. उनका वज़न जो है 48 या 49 kg ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है. क्या ये ठीक है? आप इन्हें एडवाइस
2: या
1: करें.
2: ऑल दो
1: जी
2: इन्होंने अपनी हाइट नहीं बताई है,
1: जी
2: बट हम ये मान के चलते हैं कि 49-48 तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं
1: जी
2: है।
1: जी
2: और डायबिटीज को थायराइड पेशेंट में खास तौर से हम वेट को ऊपर नहीं ले जाते हैं, इनफैक्ट वी ट्राई टू मेंटेन द वेट और स्लाइटली रिड्यूस इट।
1: जी
2: तो ये इनके लिए अच्छा है, लेकिन जब कभी ये वेट गेन करेंगी
1: जी
2: जो हो सकता है इनकी शुगर और थायराइड में डिस्टर्बेंस आए, तो दे शुड ट्राई टू मेंटेन ए हेल्दी वेट,
1: जी
2: तो दैट विल बी गुड फॉर हर।
1: डॉक्टर साहब प्रवीण हजारिका हमें गुवाहाटी असम से लिख रहे हैं कि ये इनका वेट 80 kg है. इनकी हाइट है 5 feet 10 inches और ये रोज़ सुबह मॉर्निंग में 40 minutes वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं. लेकिन वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करें?
2: हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया अपना हाइट एंड वेट, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है अराउंड 72-75 वेट इनका होना चाहिए। तो इनको 3 to 4-5 kg का मैनेज करना है। देन
1: जी
2: डेफिनेटली फर्स्ट थिंग, जैसे हम सभी पेशेंट को बोलते हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड देन लेटर ऑन हम फिर कुछ मेडिकेशन की बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या किया जाए। बट
1: जी
2: फॉर हिम, बिकॉज अभी इनको 5-6 kg वेट रिड्यूस करना है, तो ही शुड जस्ट वर्कअप अबाउट द कैलोरीज जो ये ले रहे हैं।
1: जी
2: कभी कभी जंक कैलोरीज हम लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो करते हैं, बट इन बिटवीन कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको हम कभी कैलकुलेट या करते ही नहीं अपने रूटीन
1: जी
2: में।
1: जी
2: तो ये सब चीज़ें हटाएं और नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है 6 meals a day, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इज़ रिक्वायर्ड। आप 8-8:30 ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करिए, अराउंड 11 o'clock फ्रूट्स, 1-1:30 लंच, 4 o'clock माइल्ड फ्रूट भी ले सकते हैं, 6 tea and 8:30 डिनर। इफ़ यू
1: जी
2: टेक ऑल दिस तो इश्यूज नॉर्मली नहीं आते हैं।
1: जी हमारे
0: और
1: साथ एक कॉलर है कॉल लाइन
0: जी
1: पे. डॉक्टर साहब अनिल हमें गुरुग्राम से लिख रहे हैं कि इनके पेट के ऊपर काफ़ी फैट है, उसे ये कैसे कम करें, उसके बाद हम अपना कॉलर लेते हैं जी।
2: देखिए कोई भी फैट का लोकेशन हमारे वेट रिडक्शन के उस पर नहीं डिस्टर्ब करता है। जब भी हम फैट रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल ही फैट रिड्यूस होता है, बट कुछ चीज़ें जैसे पेट के ऊपर का फैट, जैसे हमने बताया विसरल फैट या ये जो भी प्रॉब्लम

0: है, तो आप इसमें कोर एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे कि रनिंग कर सकते हैं, इवन कई तरह के ऐसे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, देन इट विल रिड्यूस इट। बट केवल ये करके नहीं होगा, डाइट के साथ ओवरऑल एक्सरसाइजेज भी करनी।
1: डॉक्टर निमी, आप कुछ कह रहे
2: हैं? मैं ये कह रही थी पूजा कि माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पानी के अलावा जिसमें कैलोरी ना हो
1: जी।
2: अगर आप दो चम्मच नमकीन आपने खा ली और आपको ये कॉग्निसेंस ही नहीं है कि मेरे अंदर 80 कैलोरी चली गई, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं। कुछ भी खाए माइंडफुल होके खाए, चाहे आपको लोग ये कहें बड़े ऑब्सेसिव हो गए हो, बहुत ध्यान रख रहे हो, कुछ भी ताना दें, लेकिन शरीर तो आप ही का है ना,
1: बहुत
2: आप ही के अंदर जा रहा है, तो प्लीज़ बी माइंडफुल।
1: हाँ ज़रूरी है बहुत वो हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए। मैम एक कॉलर है कॉल लाइन पे। हेलो मैम, लगता हमारा कॉलर से जो कॉल था कट गया है। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि तनाव और हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं वो मोटापे का कारण होते हैं,
0: yes, क्या कहेंगे आप? तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर स्ट्रेस किसी को है तो हमारे हार्मोन्स का डायरेक्शंस एंड लेवल्स रेशियो सब चेंज हो जाते हैं
1: जी।
0: बिकॉज वो स्ट्रेस आपका इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंज ओवर ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है। कुछ लोग स्ट्रेस को ये समझते हैं कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो स्ट्रेस है, बट कई बार डिसीज़ भी एक स्ट्रेस है। कई बार आपका जैसे मैंने बताया खाने पीने का टाइम नहीं है बॉडी को, वो भी स्ट्रेस लगता है
1: जी।
0: तो जब भी ऐसे इश्यूज होते हैं हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब का मतलब कि जो हम लोगों का वेट या जिसे कहते हैं कि फैट सेल्स को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके इंसुलिन को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके ओवरऑल डे टू डे लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो या तो उनके लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं
1: जी।
0: तो जिस वजह से हमारा वेट गेन होता है बट हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न दैट वी शुड फोकस मोर ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट एट द सेम टाइम इक्वली। मे बी आई शुड से कि अगर मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं ओबेसिटी को लेके, तो हम कोशिश करते हैं कि 25% टाइम हम थोड़ा स्ट्रेस रिडक्शन में भी उसके साथ
1: जी,
0: बात करें।
1: एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पे। हेलो
3: नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मेरे दो सवाल हैं सर से और मैम से कि एक तो कि वेट लूज करने के लिए क्या जिम ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि अक्सर जैसे हम सुनते हैं कि जिम आप कर रहे हैं उसके बाद जिम करना छोड़ देते हैं तो वेट दोबारा से आप वेट गेन दोबारा से कर लेते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आजकल हम जैसे वीडियोस में या रील्स में या कहीं पढ़ते भी हैं कि एक इंसान ने एक महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक महीने में थ्रू डाइट या एक्सरसाइज 10 किलो वजन कम किया जा सकता है, या फिर महीने में कितना वजन हम कम कर सकते हैं जो बॉडी के लिए सही रहता है? यही दो क्वेश्चन है।
2: सो देर इज़ नो एक्सप्रेस सोल्यूशन टू वेट लॉस। बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट और बहुत ज़्यादा जल्दी वेट जो गिरता है वो हेल्दी नहीं होता है मेरे ख्याल से। 3 से 3.5 किलो मैक्सिमम।
0: या या या आई विल से लाइक दैट कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इवन इफ अगर हम लोग ओबेसिटी मेडिकेशन या जब भी वेट मैनेजमेंट करते हैं तो ये फर्स्ट रूल है कि हमें वेट लॉस बहुत फास्ट नहीं करना
1: जी।
0: अगर हम वेट लॉस बहुत फास्ट करते हैं तो कई कॉम्प्लिकेशन लाइक कोलेसिस्टाइटिस और इवन बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं
1: जी।
0: तो इसको हमें बिल्कुल सेफ हेल्दी वेट लॉस और ओबेसिटी मैनेजमेंट में जैसे मैडम ने बताया 3 to 4 kg हम नॉर्मली सोचते हैं, मैट मैक्स आप 5 kg जाना चाहिए
1: जी।
0: जैसे इनका दूसरा क्वेश्चन है क्या एक मंथ में इतना हो सकता है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि द पर्सन इज डूइंग कितना वो डाइटिंग कर रहे हैं। कई लोग यू कहते हैं नॉन मेडिकल डाइटिंग भी करते हैं, जितना उनको नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा करते हैं, या फिर ओवर एक्सेसिव जिमिंग करते हैं जिसमें कि वो अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखते हैं, अपने मसल्स पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो इनिशियली शुरू में वो वेट लॉस कर सकते हैं बट लॉन्ग रन में वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इवन वो फैटीग ज़्यादा फील करते हैं।
1: डॉक्टर साहब जैसे पूछा गया अभी जो कॉलर थे उन्होंने पूछा कि जिम करते हैं और अगर छोड़ देते हैं तो वेट बढ़ जाता है, क्या ये सही है या एक मिथ है?
2: देखिए जिम के बारे में मेरे बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ हैं तो आपने ये गलत टॉपिक छेड़ दिया। मैं तो ये कहूँगी कि देखिए वेट लॉस करना और वेट मेंटेन करना दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो जिम फिनोमिनन है ना ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में जितने कदम चलती हैं या आप अपनी दिनचर्या में कितनी स्ट्रेचिंग कितना वेट बेयरिंग या क्या अपनी ही बॉडी का वेट बेयर करके जो घर में करने वाली एक्सरसाइज है वो करती हैं वही काफ़ी रहता है
1: जी।
2: अगर आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करके अपनी कैलोरीज को मेंटेन करें, जिम जाना फेजिक होता है ठीक है, चले गए टोंड अप हो गए, उसके बाद आपको मेंटेन तो करना

0: करना ही पड़ेगा. हर टाइम आप जिम में नहीं बैठे रहेंगे, और महिलाओं के लिए ट्रस्ट मी जिम के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है. सो प्लीज़ कंसिडर इट साइड ऑप्शन, बट घर में आप अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान
1: जी जी. डॉक्टर अमित, मेरे आपसे सवाल है, आपकी लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो कौन सी गलतियां हैं जो शरीर में वसा के जमाव और मोटापे की वजह बनती हैं, और इससे बचाव क्या है, और लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है ओबेसिटी में?
2: यस जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं.
1: जी जी,
2: ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग कुछ जाने अनजाने में चीज़ें ऐसे करते हैं जिसे हमें नहीं लगता कि उससे जो है हमारे वेट पर असर पड़ता है, बट वो असर पड़ता है. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आपका स्लीप कितना टाइम है. अगर आपका स्लीप ड्यूरेशन बहुत कम है, नॉर्मली हम चाहते हैं कि 7 to 8 hours होना चाहिए, बट एटलीस्ट 7 टच करना चाहिए. अगर आपका स्लीप कम है, डेफिनेटली आपके स्ट्रेस फेज बढ़ता है. सेकेंड फेज होता है आपका ईटिंग टाइम कब शुरू होता है. अगर आप बहुत लेट खाते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है. लाइक आई सेड अर्लियर, ट्राई टू टेक ब्रेकफास्ट अर्लीस्ट एज पॉसिबल. इफ यू सी अवर विलेजर्स ऑल्सो, दे यूज टू ईट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज अ वेरी गुड रीजन कि वो रिलेटिवली हेल्दी और हैप्पी रहते हैं. डाइट को बहुत एक साथ एक्यूमुलेट ना करें, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूट करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं. इससे बॉडी को मैनेज करने में बहुत ईजी रहता है. एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट, जहाँ तक आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है, आजकल हमारे पास जैसे कि पहले हम डाइट एंड एक्सरसाइज तो सभी लोगों को पता ही है, बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हमारे पास एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस हैं जिसको हम GLP या GIP बेस्ड थेरेपीज बोलते हैं. और इसके लिए हम हर एक को नहीं दे सकते हैं, बट उसके लिए हम उसको एलिजिबिलिटी उसकी वर्कआउट करते हैं, वेदर दिस पेशेंट इज फिट फॉर दैट थेरेपी और नॉट. बट अगर आप उस थेरेपी को देते हैं तो वेट लॉस होता है. इट शुड बी वेरी गाइडेड एंड मेडिकेटेड प्रॉपरली, एंड वी कैन रिड्यूस इवन वेट लॉस ऑफ 20-25% ओवर स्पैन ऑफ 6 months टू ईयर ऑल्सो. तो जिस पेशेंट को इतनी रिक्वायरमेंट है 10-20%, वैसे इन जनरल अगर आप 10-15% वेट लॉस करें तो इवन प्री डायबिटीज नॉर्मल हो सकता है, और जो डायबिटीज है उनकी मेडिसिन भी हाफ हो जाती हैं. तो एवरी वन शुड फोकस ऑन 10-15% वेट लॉस एंड विच कैन बी डन. ये इंजेक्शन, जिसके बारे में दो बस पॉइंट बताना चाहूँगा कि इस इंजेक्शन को वंस ए वीक लिया जाता है. ये इंजेक्शन बेस्ड होता है, ऑल दो ओरल थेरेपी भी है, बट नॉन डायबिटिक पेशेंट में ये अभी अप्रूव नहीं है. नॉन डायबिटिक पेशेंट इंजेक्शन ले सकते हैं वंस ए वीक, देर वो ग्रेजुअली दिया जाता है. कॉमनस्ट प्रॉब्लम नॉजिया वॉमिटिंग होती है, वी कैन मैनेज विद दैट पार्ट ऑल्सो, बट ग्रेजुअली विद प्रॉपर अप डोजिंग ऑफ दिस मेडिकेशन वेट लॉस को भी अचीव किया जा सकता है. और इसको विद द टाइम पेशेंट ऑल्सो मैनेज करते हैं. लेट सपोज 80 kg पर्सन मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, लेकिन जब वो 5 kg, 3, 4, 5 kg रिड्यूस करता है तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ही कैन मेंटेन द वेट लॉस फॉर लॉन्गर टाइम.
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल भी.
2: यस यस,
3: हेलो.
1: हेलो,
3: हाँ मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से.
1: जी जी,
3: पहले सबको नमस्कार.
1: जी
2: जी,
3: अच्छा मेरे दो तीन सवाल है मैडम. एक तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कितनी है, मतलब इट इज सेड दैट कि 1 gram पर के जी बॉडी वेट लेना चाहिए. आपको आदमी मोटा है और उसकी लाइफस्टाइल भी मतलब ऐसी है, तो क्या उसकी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी होगी पर, मतलब 1 gram पर बॉडी वेट, पर के जी बॉडी वेट. और दूसरा सवाल ये है कि मैडम ये जो BMI हम लोग ओबेसिटी को मेजरमेंट के लिए लेते हैं
1: जी,
3: उसमें वो कहाँ तक रेलेवेंट है? जैसे अभी किसी का BMI ज़्यादा है, देखिए मतलब 25 से ज्यादा है, 30 है, लेकिन उसका मसल मास ज्यादा है और फैट मास कम है, तो क्या वो भी ओबीस माना जाएगा?
1: जी, जी.
3: और एक छोटा मैडम तीसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बोला जाता है कि डिनर आप अवॉइड कीजिए या शाम को सनसेट से पहले पहले खा लीजिए, तो ये क्या हर के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब वेट लूज करने के लिए? थैंक यू.
0: इसमें से एक सवाल का जवाब तो मैं दे देती हूँ सर, कि आप ये कह रहे हैं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग अवस्थाओं में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है. अगर आपके यहाँ बढ़ता हुआ बच्चा है जिसका विकास हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, और लड़की या लड़का है, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा. अगर आपके यहाँ गर्भावस्था किसी महिला को है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा. अगर कोई वियर एंड टीयर हुआ है, कोई किसी बड़ी बीमारी से गुजरा है, तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. बाकी टाइम पर 1 gram पर kg बॉडी वेट ठीक ही मेजर आपने बताया.
1: जी, जी, जी.
2: Yeah, जो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि BMI रिलेटेड पार्ट, के बिल्कुल सही है. आजकल BMI अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो BMI के नियर बाय 20-25-7 हम लोग वेस्ट हिप

0: टिश्यू भी लेते हैं। इन दैट सिनेरियो भी हमने ये देखा गया है कि जो पेशेंट उतना नहीं लगता है जिसका BMI, जैसे इनका मसल मास ज़्यादा है, तो हम कुछ स्पेशल टेस्ट से जैसे डेक्सा स्कैन से या इवन कुछ स्पेशल अलग टेस्ट भी आते हैं जिसे हम फैट मेजरमेंट चेक कर सकते हैं एंड विद दैट वे वी कैन स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस।
1: डॉक्टर निमी, बात अगर हम जेनेटिक्स के करें यानी अनुवांशिक कारणों की, तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर माता पिता मोटे हैं तो बच्चों में मोटापे की संभावना बढ़ जाती है? और कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे अधिक वजन के साथ पैदा होते, तो क्या ऐसे बच्चे आगे चलकर ओबेस हो सकते हैं?
2: हाँ और ना, दोनों ही। देखिए, अनुवांशिक फैक्टर्स तो होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ फैट डिस्ट्रीब्यूशन की जेनेटिक्स होती है वो आती है बच्चों में, तो उनकी फैट पॉकेट्स एक पर्टिकुलर जगह पर होती हैं या एक्सेस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फर्क जो है एनवायरनमेंट से होता है, बिकॉज उनके परिवारों में फिर उसी तरह के गरिष्ठ खाने खाए जाते रहे होंगे, कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूटरी रहा होगा। तो अगर आपके फैमिली में अनुवांशिक ओबेसिटी है तो भी आप उसे जान के उसको कंट्रोल कर सकती हैं और डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। पूजा, मैं यहाँ पे ना भूख और वजन का संबंध समझाना चाह रही थी कि जब लोगों को भूख लगती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका शरीर उनसे एनर्जी, कैलोरी या विटामिन मांग रहा है। ये इसेंशियली मेंटल फिनोमिनन है, वो घरेलिन, लेप्टिन, इस तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, तो भूख लगना एक इमोशनल और मेंटल फिनोमिनन है। तो अगर आप उस लेवल पर काम करें कि भाई मैं खाने के साइड से आपको भूख लग रही है, देखने से, स्मेल से आपको भूख लग रही है, तो भूख को जैसे धीरे धीरे आप चबा रहे हैं या भूख को सेशियटी जो होती है, जो संतुष्टि होती है, वो आप अपनी तरह से जैसे एक कटोरी दाल ले ली, आराम से बैठ के खाई, आपको लगा जैसे आपने पूरा खाना खा लिया, तो उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो तो इंसान अपने लिए ही कर सकता है, डॉक्टर नहीं बता सकता।
1: एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं कॉल इनका भी। हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
3: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर, एक हमारे परिचित हैं, उसका ऑपरेशन हुआ था तो हफ्ता 10 दिन उनको लिक्विड दिया गया, वो नाक के थ्रू, तो उनका वेट काफी कम हो गया था, उनकी पैंटें लूज हो गई थी, तो ये क्या एक ट्रीटमेंट के कारण ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने लिक्विड ही लिया 10-12 दिन तो इसी कारण से हुआ? दूसरा सवाल ये है कि अगर ये किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज होने वाले क्या हार्मोन्स में चेंजिंग होते हैं कुछ, ये जैसे कि कुछ उनको शारीरिक चेंजिंग आते हैं, इसके लिए मोटा आदमी या पतला आदमी दोनों को ही ऐसे होते हैं?
0: आपकी बात
1: जी जी जी जी, देखिए डॉक्टर साहब आपने हार्मोन चेंज के बारे में तो बता ही दिया है, बिल्कुल।
0: लिक्विड वाली बात को लेकर यह है कि वो नॉर्मली आपकी जिस कंडीशन की वजह से ऑपरेशन हुआ है उस समय कुछ समय लिक्विड देते हैं, तो कैलोरीज को बहुत हाई नहीं रखते, तो दिस इज नॉर्मल ऑल्सो कि फॉर सम टाइम आफ्टर सर्जरी पेशेंट में लूज वेट, बट वो ग्रेजुअली वो अपने आप पिकअप कर लेता है कैच अप वेट।
1: जी डॉक्टर साहब, ओबेसिटी कैसे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है और क्या है उपाय इससे बचने के?
2: स्ट्रेस इटसेल्फ इज समथिंग दैट डिस्टर्ब्स द हार्मनी ऑफ द हार्मोन्स। इसके अलावा ऑफकोर्स वो कम मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो एक्सरसाइज करने में, मूवमेंट करने में कम मोटिवेटेड होते हैं, प्लस एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हमने देखा है वेट गेन होता है, तो ये मल्टी फैक्टोरियल ही है। नींद नहीं आती है लोगों को तो वजन बढ़ जाता है, तो सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी इस हिसाब से हैं। तो ओबेसिटी जो है मल्टी स्पेशलिटी डिसऑर्डर है, यहाँ पे साइकाट्रिस्ट का भी रोल आता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का आता है, बेरियाट्रिक सर्जन का आता है, सभी इसमें इन्वॉल्व है।
1: डॉक्टर साहब, नींद की कमी या नींद से जुड़ी परेशानियां भी मोटापे का कारण होती है, क्या है बचाव के उपाय?
0: बचाव का उपाय नींद ही है
1: जी, मगर कई बार नींद नहीं आती।
0: कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप 7 डेज में एटलीस्ट 5 डेज आउट ऑफ 7 डेज आपकी स्लीप प्रॉपर हो
1: जी।
0: और उसको आप स्लीप मेकअप करना जरूर चाहिए, बिकॉज ये इस पार्ट ऑफ स्ट्रेस, लाइक आई सेड कुछ लोग स्ट्रेस दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो स्लीप एक्चुअली गिव्स यू इनविजिबल स्ट्रेस इन योर बॉडी
1: जी। डॉक्टर निमी, हमने महिलाओं की तो बात की लेकिन अब पुरुषों की बात कर रहे थे कि हार्मोन्स का बदलाव पुरुषों को कैसे ओबेसिटी का शिकार बनाता है?
2: पुरुषों में अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, कुछ तो जनरल हैं जैसे थायराइड है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो तो सबके जनरल ही हैं
1: जी जी जी।
2: लेकिन पुरुषों में यकीन मानिए फिजियोलॉजिकल ओबेसिटी कम देखने को मिलती है, उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, लेकिन हाँ अगर उनकी दिनचर्या बिल्कुल ही अनहेल्दी है तो फिर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी कहाँ, वो जाके फिर कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। और मैंने देखा है अल्कोहल इनटेक आल्सो इंक्रीजेस ओबेसिटी को बढ़ाती है, तो

0: सेम रिस्क फैक्टर्स हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को ध्यान में रखने चाहिए।
1: जी
0: ओबेसिटी से आप सिर्फ ऑब्सेसिव लेवल पर लड़ सकते हो, सिर्फ लाइटली आप सोचो हाँ ठीक है वजन है कट जाएगा नहीं क्या करना है, वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इतना हम डरा दें कि आप अगले दिन से अपने वजन पर चेक चेक
1: जी
0: रखना शुरू कर दें, लेकिन
1: जी
0: डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी आर देयर टू गाइड
1: अगर
0: यू।
1: हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो बहुत इजीली हम
0: जी
1: कर सकते हैं कंट्रोल
0: जी
1: वेट। डॉक्टर साहब
2: एक बात मैं कहना चाहूँगा
1: जी
2: कि जब भी आप वेट लॉस के लिए प्लान करें तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मत प्लान करिए।
1: जी
2: आप ये सोच के चलिए
1: लॉन्ग
2: कि
1: रन
2: 6 months to 1 year मेरी
1: जी
2: स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी।
1: जी
2: वो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप 1 kg to 1.5 kg पर मंथ रिड्यूस कर पा रहे हैं तो यू कैन मेक योर सेल्फ लाइक ए विनर फॉर द फर्स्ट मंथ,
1: जी
2: गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड एंड देन मूव फॉर द नेक्स्ट मंथ।
1: जी
2: तो ऐसे अगर आप जस्ट इमेजिन करिए अगर आप 1 kg भी रिड्यूस करते हैं तो इन ए ईयर यू विल रिड्यूस 12 kg विच इज़ रियली वेरी रिमार्केबल। और
1: जी
2: अब हम 2 सालों बीत जाते हैं और एक एक दो दो किलो भी नहीं कम होता है।
1: जी डॉक्टर साहब एक
0: और
1: छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, ये जो चीट डाइट होती है ना वो कितनी खतरनाक होती है, कई बार मैं भी करती
2: चीट डाइट के बिना तो कोई भी इंसान रह नहीं सकता है। बट यस वंस यू डू दिस एंड मेक श्योर दैट नेक्स्ट डे यू डू अ गुड एनफ एक्सरसाइजेस टू न्यूट्रलाइज योर कैलोरीज।
0: दो तीन चीजें हैं, अगर आपके यहाँ यंग बच्चे हैं तो प्लीज प्लीज उनको स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज कीजिए। शुरुआत से ही माँ बाप अपने बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रेरित करते हैं। दूसरी बात, अपने घर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ कीप अ वेइंग बैलेंस, हर रोज़ आप अपना वजन लीजिए, हर दूसरे दिन लीजिए, लेकिन जहाँ आधा किलो एक किलो बढ़ा आप प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू टेक करेक्टिव मेजर्स। और तीसरी बात, प्लीज़ 1 घंटा या 45 मिनट से ज़्यादा बैठे मत रहिए, सिटिंग इज़ अगेन अनदर पॉइजन दैट वी हैव इन आर लाइफ।
1: जी डॉक्टर साहब क्या ओबेसिटी से कैंसर होने का भी चांस रहता है?
2: यस यस ओबेसिटी में कई सारे कैंसर होने के चांसेस हैं और इवन वी हैव सीन दैट वेरियस कैंसर्स इवन चाहे वो ब्रेस्ट हो कोलोन हो प्रोस्टेट हो ये कैंसर्स भी देखे गए। बट डेफिनेटली जिन लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उनके वेट गेन होने के बाद ऐसा होता है दैट टू वेरी हाई ओबेसिटी नॉट इन जनरल ओबेसिटी।
1: जी जी डॉक्टर साहब कार्यक्रम में अब समय बहुत कम रह गया है तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से तरीके हैं और आदतें हैं जो ओबेसिटी को दूर रखती हैं, स्वास्थ्य से जुड़े डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
0: आई वुड ऑन अ लाइट वेन से कि विटामिन एम एंड विटामिन डी, विटामिन एम एंड विटामिन पी आपने नहीं सुना होगा, ए बी सी डी सुना होगा। एम इज़ मूवमेंट एंड पी इज़ प्रोटीन।
1: जी
0: राइट इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और ऑब्सेसिव लेवल पे दीजिए, शुरुआत से दीजिए, लोगों को प्रेरित करिए। और अगर वजन बढ़ भी गया है तो एक बार अगर आप घटा लेते हैं उसको मेंटेन करिए।
1: जी जी डॉक्टर
2: मैं बस लास्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें आप 3-4 चीज़ें खुद भी कर सकते हैं।
1: हाँ जी।
2: एक तो स्टेप्स लेवल पे भी आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 steps कवर अप करने की कोशिश करिए थ्रू आउट द डे। वो आप इवन ऑफिस में भी अगर बैठे हैं तो इवन यू कैन वॉक हेयर एंड आउट उसमें बैठे बैठे ना रहें। टाइमली आप फूड जरूर खा लीजिए, अगर टाइमली नहीं खाएंगे तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स अदर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक स्लीप पैटर्न और कोशिश करिए अगर डेली 1 hour आप वॉक कर पाते हैं टू सम आउट नॉट स्पेशली इन द मॉर्निंग एनी टाइम इन द इवनिंग ऑल्सो देन आई थिंक यू कैन मैनेज योर सेल्फ।
1: यूथ की बात करें तो आजकल कई यंगस्टर्स में भी ओबेसिटी हो जाती है, इसका क्या कारण है और निदान क्या है?
0: तो मेरे ख्याल से स्क्रीन टाइम इटसेल्फ इज़ समथिंग कि भाई बैठे ही तो हैं तभी तो बैठ के स्क्रीन कर रहे हैं, तो अगर आप बैठे रहेंगे तो आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ अन ईजी टारगेट फॉर ओबेसिटी टू स्ट्राइक। तो प्लीज़ हर 15 मिनट में उठ के वॉशरूम जाइए, वापस आइए अपने ही रूम में, अपने ही क्यूबिकल में घूमिए, छत पे जाइए, अपने आंगन में चलिए। अगर आप नहीं कहीं जा रहे हैं प्लीज़ कीप ट्रैक ऑफ योर steps. That's very important.
2: I also feel that these youngsters, which I feel in OPD also, they usually have a habit of awakening late night. So usually they wake up in the 2 a.m., 3 a.m. and they have the intermittent munching also in the meantime. So late night awakening ko aapko rokna padega. क्योंकि ये रोकेंगे तभी अर्ली मॉर्निंग वाले सारे इश्यूज शुरू हो पाएंगे।
0: और पूजा ये बात सच है कि रात का खाया हुआ खाना ठीक से नहीं पचता है, वो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप रात को खाते हैं और
1: लेट नाइट
0: सो जाते हैं।
1: जी जी
2: मेंटली आल्सो इट डिस्टर्ब्स योर होल सिनेरियोस।
1: तो डॉक्टर अमित चावरा जो हैं एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट और डॉक्टर निमी रस्तोगी जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों ने आज हमें डीलिंग विद ओबेसिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारी

0: यदि आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू एवरीवन।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

FM 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा है रेनबो चैनल ते हुन युवा साथी अपना प्रोग्राम सुनन गे युवाणी।

0: जी दोस्तों, ते लग गया कि
1: जन्मों के साथी
0: हम जी दोस्तों, तुहानू पता लग गया होगा कि असी नाल नाल हां। ते जे असी गल कर रहे हां फिल्मां दी, ते फिल्मां दे विच राशि प्रोडक्शन दी जिहड़ी सब तो वधिया फिल्म लगी दी है मैनू, ओह है जी मैंने प्यार किया।
2: बिल्कुल, तो दोस्तों सब तो पहला याद आती है मैंने प्यार किया, जो कि सलमान खान ते भाग्यश्री की फिल्म है। तो ये लव स्टोरी नहीं बल्कि दोस्ती, वफादारी ते परिवार की जिम्मेदारी की एक वक्री मिसाल सी।
0: जी दोस्तों, इस फिल्म का डायलॉग जो सी ना कि दोस्ती का एक असूल है प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू, ये डायलॉग्स ने ना मैं लगता है साडे दिल दे विच एक अपनी जगह बनाई हुई है।
2: बिल्कुल, तो जो भी ये मूवी की गल हुंदी है ना, साडे लिसनर्स दे चेहरे ते एक वक्री स्माइल आ जाती है, क्यों है ना शिवम?
0: खास करके तुहानूं याद है उस फिल्म दे विच जिहड़ा कबूतर जिहड़ा संदेश लेके जांदा सी इधर उधर दिंदा सी, मैनूं लगता है किसी होर ने तो एक्सपीरियंस किया ना होवे, पर मैनूं लगता है वह चीज़ां साडी जनरेशन ने चंगी तरह एक्सपीरियंस कीतियां।
2: बिल्कुल, तो वह एक ना नॉस्टैल्जिया हिट कर दिंदियां ने।
0: बिल्कुल, तो वह नॉस्टैल्जिया एक बार फिर हिट होएगा जे असीं थोड़ा जिहा गाना सुना दिए उस मूवी का।

0: अब क्या करे जब आपको पता लग ही गया है जी दोस्तों। तो अनुबेला हूं मैं जो दस्या इस मूवी का तो फिर पता लग ही गया होगा, गीत तो पता लग गया होगा शिवम।
1: बिल्कुल ये फिल्म काफी ब्लॉकबस्टर है, इसी ते करीना कपूर दी एक्टिंग ते नाल
0: ऋतिक रोशन दी एक्टिंग ने मैं क्या जे धमाला पाते थे। अभिषेक बच्चन ने भी इस मूवी च बहुत वड्डा रोल प्ले किया
1: जी। बिल्कुल मैं लगता है उन्होंने सिंसैरिटी एक पंचुअल एटीट्यूड ते सोबरनेस ने सारा इंप्रेस कर दिता।
0: बिल्कुल ए फैमिली वैल्यूज ते इमोशंस दे उपर बहुत बरीकी नाल काम किया गया और इन्ना अच्छा इस मूवी नू बना के जड़ा पेश किया गया।
1: हर रिश्ते नू ओदी अहमियत नू बखूबी निभाया गया ते इस फिल्म ने सानू सिखा दिता कि जदों प्यार हो जांदा है ना ते बस फिर दुनियादारी वालियां चीजां ना पिछे रह जांदियां ने।
0: फिर एवें थोड़ा ना कहा जा रहा सीगा कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ।

0: जी दोस्तों, सुनिया तुसी गाना फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ बनी बनी ते गाना तुसी सुन रहे हो, तो तुहानू दस दिए कि गाना जो है ना अजे होर सुनावांगे तुहानू, पर गल ए है कि हुणे तुहानू दस दिए कि सिनेमा सुनाउण तों बाद शुरू होना जी युवाणी टूर्स एंड ट्रैवल्स, ते उहदे विच तुसी सानू कॉल करके दसना है अपने टूरिंग एक्सपीरियंसिस। रिमाइंडर देण लई तुहानू आए हां, नंबर नोट कर लिओ जी 0181 43 174।
1: बिल्कुल, तो मैं इंग्लिश भी दस दिनी हाँ 0181 234 2174। तो दोस्तों ये जेंटल रिमाइंडर है, तो भुलना नहीं है सानू कॉल करना, ना भुलिया कॉल से उड़ीक कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।

0: मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी
1: आधा अधूरा है। मैंने लगता मिलन तो साढ़ा पूरा हो ही गया जी, असं आ गए हैं जी प्रोग्राम लैके युवाणी। तो युवाणी के जो असं आ जाते हैं ना, सिनेमा सिनेमा सैगमेंट चल रहा होंगे, तो फिर असी वो फैक्ट्स थोड़े लिए सांझे करी दे जो थानू शायद तुम बरीकी ना देखे होंगे, महसूस किए होंगे और पता नहीं होंगे।
0: तो एक फैक्ट वाली गल फिर मैं भी दस दा शिवम।
1: बिल्कुल जी दसो।
0: कि थानू पता राजश्री प्रोडक्शंस ने इन सोहनिया सोहनिया मूवीज कढ़ियां, बट एक होर खास गल है।
1: की खास गल
0: है? खास गल है कि उन्होंने हरेक मूवी में जो एक्टर होंदा सी उहदा नाम प्रेम होंदा सी।
1: प्रेम जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दिए कि सलमान खान होवे या शाहिद कपूर, राजश्री प्रोडक्शंस ने प्रेम शब्द नू बड़ी ही बखूबी दे नाल फिल्मां दे विच दर्शाया। तो ये इन्हां दा मकसद ये नहीं सीगा कि वो सिर्फ उन्होंने नाम नहीं सी, बल्कि एक सोच सी प्यार सच्चाई ते संस्कार दी। वो सोच ते मैंने लगता है वो सोच उन्होंने बखूबी निभाई है।
0: तो जिवें कि असीं तुहाडे नाल दोस्तों गल कीती सी कि अज असीं तुहानू दसांगे अजिहियां मूवियां जो कि संस्कार दे नाल प्रॉपर रिलेट करदे होणगियां, ते इह मूवीज़ नूं सुन के इहनां दे बारे गल्लां सुन के तुहानू पूरा पूरा मन कर गया होएगा कि तुसीं अज कोई ना कोई मूवी देख लैनी है।
1: बिल्कुल तुसी देखनी है जी, तुहानू इन्नियां मूवीज़ दसदियां। तो तुहानू एक चीज़ होर दस दिए कि फिर राजश्री प्रोडक्शंस लई असीं कह सकदे हां कि उन्होंने प्रेम रतन धन पाया।
0: बिल्कुल जी, प्रेम रतन धन पाया। तो फिर सुन लिए?
1: सुन लेने हैं जी,
0: जरूर।

102.7 FM Rainbow, यानी कि 6 बज चुके ने ते लव यू जिंदगी प्रोग्राम च थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों, रेडियो दी वॉल्यूम ना थोड़ी तेज कर लो ते दिल दी दरवाजे ना हुन खोल लो, क्योंकि अगला एक घंटा सिर्फ थोड़े नाम। मैं हाँ थोड़ा अपना आर जे रमनीश ते थोड़े नाल लव यू जिंदगी सिर्फ 102.7 FM Rainbow ते रोज जिवें कि 6 बजे आ जांदे आ। दोस्तों एक एहसास है, ये उस दोस्त दा नाल है ते जदों तू थक जावे ता कहिंदा है होर एक बार कोशिश कर ले। ये उस माँ दी दुआ है जो बिना बोले ही थानू हिम्मत दिंदी है। जिंदगी च ना अप्स एंड डाउनस आउंदे रहिंदे ने, कहिंदे ना कभी खुशी कभी गम, पर असी इन्हां 60 मिंटां च ना एक गल सीखनी तो है कि हालात किन्ने भी औखे होन, जिंदगी नाल प्यार करना है। दोस्तों असी ना एक एग्जाम्पल दिना, दोस्तों असी किन्ने वाले हाँ। एग्जाम्पल वजो मेहनत वाली कहानी की गल करते हैं कि लुधियाना के जसप्रीत 4 साल तक ना नौकरी लिए ट्राई की, 37 इंटरव्यू दित्तियां ते हर जगह नहीं मिली। लोग कहिंदे बस छड़ दे, पर वो रोज़ ना सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ता रहा। अज वह बैंक मैनेजर आ, वो कहिंदा सर मैं हार नहीं मननी, क्योंकि मैनू पता सी वर्क हार्ड का रिजल्ट लेट आता है पर पक्का आता है। दोस्तों जमीर वाली कहानी, अमृतसर का ऑटो वाला राजू, एक दिन पैसेंजर का जोड़ा पर्स रह गया है किसी का, तो 15,000 से राजू 3 घंटे बाद उसे लभ के वापस घर आया। कहिंदा पैसे आ जाते पर जमीर एक बार गया तो वापस नहीं आता। अज असी गलबात करांगे जमीर से। दोस्तों जिंदगी ना दोस्तों एक किताब आ, कुछ पन्ने जड़े ना फाड़ गए, कुछ गंदे हो गए, पर किताब बंद नहीं करनी। अगला पन्ना ना पलटना है ते उस ते नई कहानी लिखनी है। दोस्तों नई कहानी लिखनी है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दोस्तों, ते आई होप कि तुसी भी ना एंजॉय करते होंगे प्रोग्राम नू, हर प्रोग्राम नू, ते क्यों ना एक प्यारे जे गाने तो शुरुआत हो जाए। दोस्तों

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों जमीर ते गल हो रही सी, हुण ना सी जमीर वर्सिस कानून वर्सिस लोक की कहणगे, इहनां दा ना तिन्नां दा डिफरेंस आजा। पहला दसदे हां कि ये जमीर कानून लोक कित्थे है। जमीर हुंदी थोड़े अंदर, कानून हुंदा किताब च, ते लोक होंदे गलियां च। ते जिहड़ी जमीर दी सज़ा होंदी ना, इह की है? जमीर दी है बेचैनी, नींद ना आउणा। ते कानून दी है जेल, जुर्माना। ते लोकां दी है बदनामी। ते इहनां दा इनाम की है? जमीर दा इनाम है सुकून, कानून दा है बरी हो जाणा, ते लोकां दा है वाह वाही। कई बार कानूनी तौर पर ना तुसी सही होंदे हो दोस्तों, पर जमीर कहती है तू गलत है। जिवें किसी कमजोर नाल बहस जित जाना कानून तौर पर ठीक है, पर जमीर कहती है रहम कर। इसलिए कहते ने दोस्तों, लोका तो डर के नहीं, जमीर तो डर के जियो। जमीर मर क्यों जाती है दोस्तों? आखिर विच तीन कातल होंदे ने, लालच, माहौल, जिहड़ा टाल मटोल करना। सब तो पहला लालच, पैसे दे लालच ना असी पहली बार झूठ बोलते हाँ, जमीर चीकती है। दूजी बार असी उसकी आवाज़ ना हौली कर दें, तीजी बार बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा है माहौल, सारे ही करते हैं कह के असी अपने जमीर नू ग्रुप च भेज दें। तीसरा है टाल मटोल, बाद च मुआफ़ी मंग लवेंगे कह के असी जमीर नू ना EMI ते पा दें, फिर वो ना साढ़े ते वापस आती है डिप्रैशन टेंशन के रूप च। बुल्ले शाह कह गए, ना मैं मंदिर च ना मसीत च, मैं तो वसदा हाँ जमीर दी मसीत च। दोस्तों क्या बात है।

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी विद आरजे रमनीश। दोस्तों जमीर तेना ही गल्ला कीतिया, लालच, माहौल, टाल मटोल, जो तो जमीर क्यों मारती उन्होंने बारे गलबात की। जमीर नू ना हन सब तो जरूरी गल है कि जमीर नू जिंदा किवें रखिए। दोस्तों तीन अभ्यास याद रखियो, रोज 5 मिनट का हिसाब। तुसी पता की करना है, रात नू सौण तो पहला ना अखा बंद करके पुछो, अज मैं किस नाल गलत किया, किस दी मदद कर सकता सी, यह जमीर की जिम है। दूसरा, छोटी इमानदारी, आटो वाले नू ना 2 रुपए वादू दे दो, दुकानदार नू सही पैसे दो। छोटिया इमानदारियां ना जमीर नू तकड़ा कर दिया ने। तीसरा, ना कहना सीखो दोस्तों। जो दोस्त गलत काम ले जिद करन ता जमीर दी सुन के ना कह दो। पहली बार मुश्किल लगेगा, दूजी बार आसान लगेगा दोस्तों, दूजी बार आसान लगेगा। दोस्तों यही तो होंदी है गल, शुरुआत ही जिहड़ी ना जो आप कर देने तो कहिंदे ना लिमिटेड टू अनलिमिटेड कदों हो जाता सानू पता ही नहीं लगता। इसलिए ध्यान रखो दोस्तों।

दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है ते मैं तुहाडा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों आखिरी गल, जमीर ही लव यू जिंदगी है। दोस्तों दुनिया च ना सब तो अमीर ओह है जिसका जमीर साफ है, क्योंकि ओह रात नूं सिरहाणा लैके सो जांदा है। जिंदगी च ना असफलता आवे तो कोई गल नहीं, पर जमीन ते दाग ना लगे, क्योंकि पैसा फिर कमाया जा सकता है, रिश्ता फिर बनाया जा सकता है, पर एक बार मरिया होया जमीर वापस नहीं आता। इसलिए हर फैसले तो पहला बस एक सवाल पूछा करो, जे यह गल अखबार ते पहले पन्ने ते छप जावे ता मैनू शर्म आवेगी, जे हां तो ना करो, वही जमीर है। दोस्तों अखीर विच ना यही कहूंगा कि दुनिया 100 रस्ते दिखाती है, पर जमीर सिर्फ एक रस्ता, सच का रस्ता। उस रस्ते तुरन वाला कदे भुखा नहीं सौंदा, क्योंकि उसके नाल रब सौंदा है।

प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। 107 FM रेनबो ते हरीश नाल है तुहाडे और फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच अज असी गल कर रहे हैं असद भोपाली जी दी और उन्होंने हमेशा जिदे नाल भी कम कीता सिर्फ प्यार ही वंडिया और ए उन्हां दी कलम तो निकलिया होया गाना सी जो असी सुनिया मैं प्ले कीता तुहाडे लई 107 FM रेनबो फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच। अज असी गल कर रहे हैं असद भोपाली कमाल दे गीतकार लिरिसिस्ट शायर और तुहानूं दस दें कि असद भोपाली जी का जन्म अज ही दे दिन होया सी और असद भोपाली जी ने भोपाल दे विच अपनी उन्हां दी परवरिश होई और उस तो बाद जिदा जिदा वड्डे होए फादर नूं बहुत ज़्यादा नॉलेज सी भाषावां दी उर्दू जानदे सी और अरबी भाषा फारसी भाषा और उन्हां कोलों ही ये भाषावां दा ज्ञान मिलिया और स्टडी करदिया करदिया होर ज़्यादा रुझान जिहड़ा लैंग्वेजिज वल वधिया और शायरी का शौक पिया और 21 साल मतलब बड़ी छोटी एज दे विच ही लिखना स्टार्ट कर दिता और जदों जवान होया लड़का असद भोपाली तो उन्होंने मुशायरिया ते जाना शुरू कर दिता और मुशायरिया की जान कहलाउण लगा भोपाल दे विच। और तुहानूं दस दें कि कौन शख्स सी जिन्हां ने उन्हां दी लाइफ चेंज कर दिती और उसनू एक प्रोफेसनल गीतकार बनाया। दोस्तों मुंबई दे विच दो ब्रदर्स फजली ब्रदर्स उन्हां दा नाम और एक फिल्म बनाउणा चाहुंदे सी, फिल्म दा नाम सी दुनिया।

हां जी, ये सारे गाने असद साहब ने लिखे सी। और दोस्तों कदे कदे ना मतलब ये चीज़ सुन के ना मैनू एक गल होर याद आई कि एक बार सावन कुमार डायरेक्टर सन और एक लिरिसिस्ट कोल जांदे ने और उसनू कहिंदे ने कि गाना मेरे लिए लिखो, बट वह कहिंदा कि मैं 25,000 रुपए लेने ने और गाना कहिंदे ने कि मेरे को इन्ने पैसे नहीं है गाना लिखाउण दे। सावन कुमार कहिंदे ने, बट वह लिरिसिस्ट कहिंदा कि मैं इन्ने पैसे ही लवांगा और मजबूरन सावन कुमार नू उनां दे घर तों बाहर आउणा पैंदा और अंदरों अल्फाज निकलदे ने कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। और इस करके ये लाइन जिहड़ी निकली वह गाना बन गई और उन्होंने आप गाना लिखिया ये वाला।

पेशनी एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन दौरे तहत ऑकलैंड पहुंचे। व्यापार निवेश सिक्ख्या तकनालोजी ते आपसी संबंधा च सहयोग नूं होर मजबूत करन दे तरीकियां ते चर्चा करन दी उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर च दान की कथित चोरी की निरपक्ष ते समाबद्ध जांच की मंग करन वालियां दियां पटीशनां ते सोमवार नूं सुनवाई करेगा। पंजाब दे राजपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अज चंडीगढ़ दे वख-वख थावां ते बूटे ला के वन महोत्सव 2026 दी शुरुआत कीती। पंजाब च वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध एसआईआर प्रक्रिया लई सूबे भर दे सारे पोलिंग बूथां ते कल तों दो दिना विशेष कैंप लगाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप नूं यूजर नेम फीचर नूं लागू करन संबंधी सरकार नूं अपना जवाब सौंपिया। अमृतसर पुलिस वल्लों अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह दा पर्दाफाश। 8 किलो तों वध हैरोइन ते 2 लाख दी ड्रग मनी बरामद कीती। भारत ते इंग्लैंड दीआं महिला क्रिकेट टीमां विचकार लॉर्ड्स मैदान च इको एक टेस्ट मैच जारी है। ते मौसम विभाग वल्लों अगले 3 तों 4 दिनां च हरियाणा चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश च भारी मींह पैण दी पेशगोई। एसएनएफएम न्यूज हेडलाइंस। हुण तों कुछ कु पलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे।

0: 107 FM रेनबो ते हरीश नाल है तुहाड़े और पब्लिक मंच प्रोग्राम चल रहा है। तुसी मेरे नाल जुड़ रहे हो 2342 174 नंबर डायल करके 0181 अगे ला के और एक कॉलर मेरे नाल जुड़े ने गल करते हैं उन्होंने नाल। हैलो
1: हैलो हांजी
0: सर, सत श्री अकाल जी। कौन गल कर रहे हो? प्रभजोत कौर जी, स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम च। और रामा मंडी रहनी हो तुसी? जलंधर तो ही गल कर रहे हैं मतलब?
1: हांजी
0: हांजी। और किदा इलाके दे विच लगदा है कोई प्रॉब्लम आउंदी है बरसात दी वजह दे नाल तुहानू?
1: हांजी सर जी, जिद्दां मतलब कि सड़कां नहीं बणियां हैगियां सर जी, वजह पक्कियां सड़कां।
0: हांजी,
1: ओ नहीं बणियां जिद्दां पक्कियां सड़कां नहीं बणियां हैगियां। हम्म, ते ओ फिर जिरो बरसात आउंदी ओ पानी कच्चे, जिद्दां कच्चे रास्ते जिद्दां सड़कां, ते ओ फिर पानी खड़ा हो जांदा आ 100 इंच जिद्दां।
0: हां, मच्छर पैदा हो जाता और उस तो बाद होर जड़ियां प्रॉब्लम्स ने वो एक तो बाद एक वधदी जांदियां
1: ने। हां जी
0: हां
1: जी, हां जी हां जी। सर बाहर निकलो मैं नहीं, फिर जी करदा मतलब कि बच्चा ना मैं नहीं कड्डीदा सर बाहर।
0: और ओदी वजह दे नाल स्कूल जाण दे विच भी प्रॉब्लम आउंदी होएगी न्याणे नूं, खेडण दे विच प्रॉब्लम
1: भी बहुत आउंदी आ।
0: हां, खेडण दे विच प्रॉब्लम आउंदी होएगी, सप कीड़े वगैरा होर चीजां दी जिहड़ी आ ओहदा खतरा
1: बहुत आ। इत्थे प्रॉब्लम दी बहुत आ, लाइट जी दा ट्यूबां नहीं होंदियां ओह वी नहीं हैगियां लगियां अजे।
0: हम्म, और ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ?
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਏ ਆ ਸਰ ਜੀ।
0: ਹਮ ਹਮ,
1: ਜਿੱਦਾਂ 10-12 ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ ਜੇ।
0: ਹਮ ਹਮ,
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
0: ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ?
1: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਘੱਟ ਆ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਂਪਰੀ ਜੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: और ए भी चीज होनी चाहिए ना कि जदों

0: 107 FM रेनबो ते बरसात दी गल चल रही है और बरसातां दे कारण हो रहियां प्रॉब्लम्स और उन्हां तों किवें बचिया जा सके इस बाबत गलबात चल रही है। साडा पब्लिक मंच प्रोग्राम और इस मंच ते साडे लिसनर्स जुड़ रहे ने। एक होर लिसनर मेरे तक पहुंचे ने 2342174 नंबर डायल करके गल करदे आ। हैलो सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो? अच्छा,
1: मेरी तो सरकार नु बेनती है जी हुण मीह निका पैंदे नहीं हुण उहदा बंदोबस्त कीता जावे जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मीह तो पहला पहला जेकर बंदोबस्त होण तां अगों दे नुकसान जिहड़े ने उह ना लोकां नु झलणे पैण।
1: हां जी,
0: और इहदा की हल कढ्या?
1: बेनती है कर सकदे सर जी।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल, और कोई शिकायत वगैरह या किसे तक इह अपनी जिहड़ी गुहार है उह पहुंचाई है तुसीं?
1: बहुत सखावा रहिंदा, मीह पैंदे जी ना तां फिर मिट्टी टिकदी है जी, बहुत मुश्किल आउंदी है फिर जी।
0: ओदां वैसे तुहाडे इलाके दे विच कोई बरसात दे कारण कोई प्रॉब्लम, सब ठीक है?
1: सर जदों ना फिर मीह बरसात पैंदी आ
0: नुकसान ही हुंदा, और जेकर लोड तो ज्यादा और लोड तो घट जिन्नी जरूरत है उन्नी होवे तां फिर तां हर चीज दे लई ओ वधिया हुंदी है।
1: सर जी आपां तां इही बेनती करदे आ वी मीहां तों पहलो पहलो वन नूं ठीक तरह प्रबंध करे जाण
0: जी। जी
1: जिहड़ा खुल्ला वन आ उहनूं बंद करिया जावे
0: जी। जी और तुहाडी जेकर तुसीं इह शिकायत जिहड़ी है अपने होर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाई है तां इह जरूर मिल के पहुँचाओ, लैटरस लिख के उन्हां तक इह बार बार पहुँचाओ, एक बार नहीं बार बार, जेकर नहीं गल सुनी जाती तां बार बार उन्हां तक इह प्रॉब्लम्स जिहड़ियां पहुँचनियां चाहीदियां ने, तां ही उन्हां दा हल निकलेगा जी। थैंक यू सो मच मेरे नाल जुड़न दे लई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुसी मेरे तक पहुंचो, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, टाइम बड़ी छेती भजदा है ना, और ये तां ही रोके जा सकदा जदों असीं टाइम ते हर एक काम करांगे। 2342174 नंबर डायल करना तुसी, हले हैगा टाइम, मारा है तुहाडे कोल 0181।

एहसान तेरा होगा मुझ पर, मोहम्मद रफी साहब की आवाज दे विच खूबसूरत जिहा ट्रैक थोड़े तक पहुंचा। अगला मैसेज पढ़ते हैं जी। राम राम जी, राम राम जी। फिल्म द ट्रेन गीत मुझसे भला ये काजल तेरा, गायक मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मैसेज मेरे तक पहुंचे जी। विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा, थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुंचाउन दे ले जी। अगला मैसेज पढ़ते हैं जी। सुप्रिय नमस्कार जी, आपकी पेशकश एक नंबर जी, गीत कोई भी शामिल कर लीजिए। कबीर रेडियो श्रोता संघ ढूंढी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर

भी शामिल कर लीजिए। कबीर रेडियो श्रोता संघ ढूंढी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर। थैंक यू सो मच मेरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए जी। अगला मैसेज पढ़ते हैं खुशनुमा गीत गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली तुम्हें मैसेज सर तक पहुंचे, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है जी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, एनी सॉन्ग, थैंक यू सो मच। ये प्यार भेजण दे रहे जी, प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है जी नमस्कार गांव हिपर सोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और कृष्णा शेख, ये मैसेज मेरे तक पहुंचे है जी, थैंक यू सो मच। और फटाफट फरमाइश पूरी कर दें जी आप द ट्रेन मूवी का ये ट्रैक, आओ सुनते हैं।

सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम परिवार वाले किसी भी गीत में शामिल करें जी। थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुंचाउण दे लई जी। और असी जानवर फिल्म दा मोहम्मद रफी साहब दी आवाज़ दे विच ए ट्रैक प्ले करदे आं जी। मेरी मोहब्बत जमा रही है सदा, आ जाओ।

कविता चोपड़ा सिल्वर कुंज वन लुधियाना तो मैसेज आया जी। थैंक यू जी, तुसी शामिल हो गए हो जी। अगला मैसेज है जी, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दे। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, वर्षा सुमन। थैंक यू जी मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए, और मैसेज शामिल हो गया जी थोड़ा। और फिलहाल असी फिर ट्रैक प्ले करते हैं और मैसेजेस का सिलसिला ठा ठा करते जो मैसेजेस तुसी भेज रहे हो वो इस तरह बाजीगर फिल्म का ट्रैक कह रहे हैं। फिलहाल असी आ वाला सुनने हैं जी, आ जाओ।

ये मेला तो घड़ी का दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला तो घड़ी का दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार पुकार। हाय हाय हाय हाय, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे,

मुलाकात हाय हाय हाय मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खो के जाएंगे मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ

मैसेज है जी, सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मनी काका, बिट्टू लाडी, मास्टर मोहन, जनक नगर जलंधर तो जी, थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुंचाउन दे ले जी। और प्रोग्राम दिल चाहता है पेशकर्ता दरनीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है आपकी, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रघुनाथपुरा श्री जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी, थैंक यू जी। और अगला मैसेज मेरे तक पहुंचे है पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर तो, और बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, दिव्यांग खलीफो की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा मैसेज मेरे तक भेज रहे ने जी, थैंक यू सो मच। और अगला मैसेज मेरे तक पहुंचे जी, ये मैसेज पहुंचे ने ठा ठा कर दे मेरे तक पहुंच रहे ने जी। और सर नमस्कार, पसंद करता दत्रेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ तो, हीरा मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। फिलहाल पानी दी चलना सुनते हैं और ये ट्रैक अज दा साडे प्रोग्राम दा अखीरला ट्रैक, और वधदे अगे कोई नहीं जी दी वारी नहीं आई, कल जरूर आएगी जी, वधदे अगे इस प्रोग्राम नू करदे आं इत्थे ही खत्म।

शाम गजल। एहसास और फीलिंग्स का एक कॉम्बीनेशन जिस विच तुसी इना गजलों का लुत्फ उठाते हो और नाल नाल भुले विसरे वो दिन वो समा वो सिचुएशंस वो सारिया गल्लां जो कदे साडे दिल दे अंदर असी उसनू ना एक कोने दे विच चाबी ला के चाबी सुट दित्ती और उसनू किते वहा दित्ता और उस कोने दे विच कदे झाक दे नहीं आ बट कदे कदे ये जिहड़ियां गज़लां ने ये जिहड़े अल्फाज ने ये जिहड़ियां फीलिंग्स ने सानू रह रह के उस कोने वल झांकण नू मजबूर कर दियां ने। कदे तुसी उना कोनिया वल झाकिया और जे झाकिया तो तुसी किसे नू माफ कर देना चाहुंदे हो या किसे कोलों माफी मंगना चाहुंदे हो।

न बातें खत्म होती हैं न मन कभी भरता है। तू वो चांद है जो मेरे हर पल को रोशन करता है। तेरे साथ बीते हर लम्हे से ये दिल मोहब्बत करता है। तेरा यूं मुस्कुराना ही तो मेरे दिल में सुकून भरता है। मेरा रोम रोम तुमसे मोहब्बत करता है। मेरी रूह का हर कतरा सिर्फ तुम्हें चाहता है।

बदल गया हूं, लेकिन बदल गया हूं का मुझे पता नहीं। हां, कुछ सुधर जरूर गया हूं। बेफिक्री नहीं, अब फिक्र करने लगा हूं। देरी से डर लगने लगा है, अब समय पर घर आने लगा हूं। देर रात मेरे इंतजार में बैठे दो मुरझाए चेहरे, मां पापा के इंतजार को महसूस करने लगा हूं मैं। बदल गया हूं, बदल गया हूं का पता नहीं, पर कुछ सुधर जरूर गया हूं। कुछ सुधर जरूर गया हूं।

फिक्री नहीं, अब फिक्र करने लगा हूं। देरी से डर लगने लगा है, अब समय पर घर आने लगा हूं। देर रात मेरे इंतजार में बैठे दो मुरझाए चेहरे, मां पापा के इंतजार को महसूस करने लगा हूं। मैं बदल गया हूं का पता नहीं, पर कुछ सुधर जरूर गया हूं। कुछ सुधर जरूर गया हूं।

और सर्दियों की खिली हुई धूप जैसी दिल को सुकून देती है। कुछ ऐसा ही मुझे मिलता था महज सोचने भर से तुझे, मेरी रूह खिल उठती थी सर्दियों की खिली धूप की तरह तुझे महज एक बार देखने भर से, महज तुझे देखने भर से ही।

एक बार करामात हुई थी, वो पहली मुलाकात हुई थी। पूरा दिन ही गुजर गया था तब इतनी लंबी बात हुई थी। अगले दिन की रुखसती थी, बेचैन बसर वो रात हुई थी। हंसते हंसते विदा किया था, फिर लंबी बरसात हुई थी। फिर खो के तन्हाई में उसी दिन से लिखने की शुरुआत हुई थी, लिखने की शुरुआत हुई थी जब उनसे जुदाई हुई थी। आज फिर उनकी याद आने लगी है, ना जाने क्यों।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है और यह हसी रात नू होर भी हसीन बनाउन दे लई हरीश तुहाडे कोल है और इस रात का असर इस रात का असरार आपके पास है आपके साथ है और ये रात खूबसूरत होगी और इस रात में आपको आपका कोई हमदम आपको कोई साथी बहुत याद आता होगा और कभी कभी इस रात में एक सपना और सपने में वो कली हंसी सी कली खिलखिलाती होगी याद आती होगी है ना उस कली की हूबहू ऐसे ही होगी सुनिए तो जरा।

ये रात कितनी हसी होती है ना, और इस रात में कितना सुकून होता है। सच माने तो ये रात हमें जीना सिखाती है और हमें इस बात के मायने सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में थम जाना, रुक जाना, ठहर जाना कितना लाजमी होता है। और इस रात में दिल में और जुनू में एक ऐसा जोश भरता है कि फिर ठहर जाने के बाद हम बड़े से बड़ा मकाम भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह जीवन के सफर पे या कोई राही किसी लंबे सफर पर निकला हो तो उसे रुकना जरूरी है, ऐसे ही दिन भर के काम के बाद रात का आना जरूरी है ना। और इसीलिए ये रात खूबसूरत है, इसीलिए ये रात सुकून भरी है, चाहे काले घने साए से भरी है।

हमें बहुत कुछ बताती है। बाहों में भरकर हमारी सारी थकान उतारती है और हमारी आंखों पर ख्वाबों की एक बहुत प्यारी सी क्यारी खिलाती है और उस क्यारी में घूमकर उसके हरे हरे फूलों को चूमकर पता ही नहीं चलता कि कब हम नींद में चले जाते हैं। ये हमें जीना सिखाती है, हमारे ख्वाबों को उड़ान देती है। बहुत से ख्वाब, ख्वाब जो खुली आंखों से कभी देखे ही नहीं जा सकते, ये रात उन्हें हम तक पहुंचाती है। ये रात सही मायनों में हमें मंजिल तक पहुंचाती है। ये रात अच्छी है ना, ये रात अकेले हैं तो फिर भी हमें अपना साथ दे जाती है। ये रात किसी को भी अकेले नहीं रहने देती, हमारे साथ साथ ढलती है, हमारे साथ साथ पलती है ये रात। ये रात

कभी कभी पूर्ण उजाले को पाने के लिए, उसे आंखों में लाने के लिए काले सांवों का होना जरूरी है। जब तक हमें कालेपन का, हमें घने अंधेरों का, घनघोर अंधेरों का एहसास नहीं होगा, तब तक प्रकाश का हमें कैसे पता होगा। और जब हम इन एहसासों से होकर गुजरेंगे तो फिर प्रकाश की उपस्थिति हमें बहुत खूब लगेगी। सही मायनों में फिर वो हमारे दिल तक पहुंचेगी, हमें सुकून देगी। इसीलिए ये रात का होना बड़ा जरूरी है। और ये रात नई हो या पुरानी, रात खूबसूरत

सही मायनों में फिर वो हमारे दिल तक पहुंचेगी, हमें सुकून देगी। इसीलिए ये रात का होना बड़ा जरूरी है, और ये रात नई हो या पुरानी, रात खूबसूरत है।

मैंने जब भी तुम्हें याद किया तब तुम मेरी आंखों के सामने आई। मैंने जब भी तुम्हें चाहा तुम्हारे प्यार ने मेरे सामने तुम्हारी सूरत बनाई। मैं जब भी किसी भी सिचुएशन में होता हूं तो सिर्फ तुम्हें ही याद करता हूं। ना जाने क्यों तुम इस दिल से इस रूह से छूटती ही नहीं। मानो किसी जिस्म में रूह समाई होती है ना, हूबहू वैसे ही तुम्हारी याद समाई है मेरे दिल में, जो मेरे चाहने से भी नहीं निकलती। और सुना है कि रूह को सिर्फ भगवान ही निकाल सकता है। मेरी याद भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जा सकती है। तुम्हारी याद, तुम ही उसे मेरे दिल से जुदा कर सकती हो, जैसे भगवान जुदा करता है जिस्म से रूह को।